0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उघरायूं बुख न लॻण या बदहज़मी जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-1287 शिफ़ाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
3: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
4: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉ

0: मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-2525-786।
3: जी हा, 2315-2576।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दी मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331-2525-786।
3: जी हा, 3135-2525-786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस: अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370।

0: 94-95-244।
1: मातली ऐं आसपाल ऐं ख़ुशख़बरी जी पहरेल फार्मेसी मातली जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट 12% ऐं दवाइत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। सन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी फ्री करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313086313।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घर छिटू लगरा लाए खुश खबरी। अवां चाहियो था अवां जे जो पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्त लगरा लाए राबतो कंदा मोबाइल नामली रो त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबतो कंदा।
4: 0331252576।
3: जी हाँ, 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा।

0: एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: नेशनल काउंसिल के सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ट्रंप दलदल में फासी पयो आहे, हाणे बाहर निकरण लाइ हथ हणी रहियो आहे। ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटार न कंदो। सिक्योरिटी फोर्सेज जो केपीके ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि खिलाफ़ ऑपरेशन, चार दहशतगर्द मारिजी विया, हथियार हथ कया विया आहिनि। केपीके जे इलाइक़े मीर अली में फोर्सेज जे ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारिजी विया। टांक में पटवार खाने खे टारगेट करण जी बि कोशिश नाकाम। पंहिंजे ई बम फाटण सबबि हिकु दहशतगर्द जहनम भेड़ो थी वियो। बलोचिस्तान जे सोराब ज़िले में बि फोर्सेज जी हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई कई वई। हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां केपीके बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयुनि ते फोर्सेज खे भेटा पेश कई वई। मोहसिन नक़वी चयो आहे त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा। मीरू ख़ान जे सजावल जुड़े जो थाणे जी हद में मुबैना पुलिस मुक़ाबलो। साथियुनि जी फायरिंग में हिकु ॾोहार जी मारिजी वियो। पुलिस मूजिब लुकमान लाड़े वटि पुलिस ॾोहारियुनि सां मुक़ाबलो थियो। मुक़ाबले दौरान साथियुनि जी फायरिंग में बदनाम ॾोहारी इम्तियाज़ जतोई मारिजी वियो। वारसनि जो इम्तियाज़ जतोई खे पुराणी दुश्मनीअ तां क़तल करण जो इल्ज़ाम आहे। मेहड़ में पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि जी फायरिंग, ॿ ॼणा ॻोठाणा ज़ख़्मी। भुट्टे मोहला में खोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ तकरार तां फायरिंग वारो वाकियो पेश आयो। गोलियूं लॻण सबब ॻोठ रहम अली खोसो वासी ज़ुल्फ़कार राजा खोसो ज़ख़्मी थिया। कंटी वारी हालति में लाड़काणे अस्पताल मुंतकिल कया विया। पनो आकिल में संगावती तकरार तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। 15 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। ॻोठ अलायार टावरीअ में टावरी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में संगावती तकरार तां झेड़ो थियो। झेड़े दौरान लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सबब औरतुनि समेत ॿिन्ही धुरियुनि जा 15 ॼणा ज़ख़्मी थिया। कड़ियोगंवर में गोरी केनाल में ॿुडी वियल सत वरियुनि जे नींगर जो लाश हथ न आयो। वारसनि जो धरणो गोलाड़ जी भरिसां ॻोठ अहमद खोसो वटि नींगर शहज़ादपुर बशीर खोसो गुज़िरियल ॾींहुं ॿुडी वियो हो। इलाइक़े वासियुनि ऐं वारसनि पारां पंहिंजी मदद पाण तहत ॿुडी वियल नींगर जी ॻोल्हा जारी आहे। इंतिज़ामिया जी मदद न मिलण ख़िलाफ़ धरणो हयो वियो। नवाब शाह जे मोहम्मदी टाउन जे रहवासियुनि जो मुबैना तौर अगवा थियल नींगरीअ जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। जानिब ओड पंहिंजे वालिद जमीर ज़ाल शबाना ऐं ॿियनि माइटनि सां गॾिजी प्रेस क्लब वॾो एहतजाज कयो। मुज़ाहिरनि मूजिब हथियारबंदनि 11 सालनि जी नियाणी रीमा खे अगवा करे विया आहिनि। नींगरीअ खे बाज़ियाब करायो वञे। हिंगोर जा वेझो क़ौमी शाहरा ते ट्रालर जो मोटरसाइकिल खे टकर। नौजवान फोत, हिकु ॼणो ज़ख़्मी। रसूलाबाद स्टाफ वटि हादसे में सोहेल अहमद चनो फोत ऐं एसाक ज़ख़्मी थियो।
2: आप सुन रहे थे नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: टुकड़ो से जुड़ी
5: सिंध के दिल से निकली आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
7: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
9: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे
10: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
7: मातली आस पास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
9: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना

0: ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
1: जी हा, 2315525786।
0: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई

0: अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन आई मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड आई MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे आई हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बद हज़मी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-4495-244।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-24-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 1 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: प्रचंड इम्कान ज़रियन मौजूद वज़ीर आज़म वट आला सतही इजलास कुछ देर बाद थींदो जंहिंमें वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं ॿिया अहम ज़िम्मेवार शरीक थींदा. KPK समेत मुल्क जे सिक्योरिटी सूरतहाल ते गौर कयो वेंदो. आइन जे आर्टिकल 233 ऐं 234 तहत KP में एमरजेंसी या गवर्नर राज लॻाइण ते गौर कयो वेंदो. या मुअतल नथो करे सघिजे तय थियल मुआदनि ते अमल करण बि लाज़िम हूंदो आहे. सिंतास मुआदे बाबति आलमी सालसे अदालत बि पाकिस्तान जे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे. सुल्ह समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर ततारड़ चयो आहे त सिंतास मुआदे खे ख़तम तोड़े मुअतल नथो करे सघिजे. पाकिस्तान सिंतास मुआदे जे तहफ़ुज़ लाइ घुर्बल क़दम खणण लाइ तयार आहे. पाकिस्तान पंहिंजे पाणीअ जे हिसे ते को बि ठाह न कंदो. सिंतास मुआदो पाकिस्तान जे बका जो मसइलो आहे. ईरान जी सूरतहाल घणी ख़राब आहे. हथियार फिटा कंदा या न ख़बर नाहे. जेसिताईं मां आहियां उत्तर कोरिया जो सरबराह किम जोंग उन ठीकु रहंदो. वॉशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख़्स आहियां जेको किम जोंग उन खे पसंदि कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका जी बरतरी बरक़रार आहे. जेका बरक़रार ई रहंदी निगरानीअ लाइ कमेटी बि जोड़े रहिया आहियूं. ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़चे जे साल्स मुल्क कतर जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ात. कतरी साल्सनि ईरानी तजवीज़ुनि ते अमेरिकी जवाब अब्बास इराक़चे हवाले कयो. अब्बास इराक़चे अमेरिकी जवाब ते ईरानी क़यादत सां मुशावरत कंदो. ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ट्रम्प दलदल में फासी पियो आहे. ईरानी तजवीज़ू अमेरिका वटि पहुची वियूं आहिनि. फ़ैसिलो ट्रम्प खे करणो आहे. ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटा न कंदो. सिक्योरिटी फोर्सिस जो KPK ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन. 4 दहशतगर्द मारिजी विया. हथियार हथ कया विया आहिनि. KPK जे इलाइक़े मीर अली में फोर्सिस जो ऑपरेशन दौरान 3 दहशतगर्द मारिजी विया. टांक में पटवार खाने खे टारगेट करण जी बि कोशिश नाकाम. पंहिंजे ई बम फाटण सबब दहशतगर्द जहनम भेड़ो थी वियो. बलोचिस्तान जे सोराब ज़िले में बि फोर्सिस जे हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई. हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो. घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां KPK ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाईनि ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई. मोहसिन नक़वी चयो त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा. गंबट भरिसां आरिजा बरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पैसनि जी ॾेती लेतीअ तां झेड़ो. हिकु ॼणो क़तल, ॿ ज़ख़्मी. भारो शहर में धुरियुनि में पैसनि जी ॾेती लेतीअ तां झेड़े दौरान फायरिंग थी आहे. फायरिंग में गोली लॻण सबबि अजीब आरिजो मरिजी वियो आहे. ॿ ॼणा फोत थी विया आहिनि. खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो. मीरू ख़ान जे सजाव जी हद में मुंबई ना पुलिस मुक़ाबलो. साथियुनि जो हारी मारिजी वियो. मान लाड़ी वटि पुलिस ॾुहारियुनि सां मुक़ाबलो थियो आहे. मुक़ाबले दौरान साथियुनि जी फायरिंग में बदनाम ॾुहारी इम्तियाज़ जतोई खे पुराणी दुश्मनी तां क़तल करण जो इल्ज़ाम. मेहड़ में पुराणे तकरार तां हथियारबंदनि जी फायरिंग. ॿ ॻोठाणा ज़ख़्मी. भुटे मोला में खोसा बरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ तकरार तां फायरिंग वारो वाकियो पेश आयो आहे. गोलियूं लॻण सबब ॻोठ रहम अली खोसो वासी ज़ुल्फ़कार ऐं राजा खोसो ज़ख़्मी थिया आहिनि. गणती वारी हालत में लाड़काणे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे. पनो आकिल में सगावती तकरार तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो. 15 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया. ॻोठ अलायार टावरी में टावरी

0: रात्रि जे बिन धुरिन में सगावती तकरार तां झेड़ो थियो आहे। झेड़े दौरान लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सबबि औरतनि समेत ॿिन्ही धुरिन जा 15 ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। मंज़ूराबाद वेझो मांझंदि में वापारियुनि ऐं शहरनि जे पुलिस जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ शटरबंद हड़ताल, थाणे आॾो धरणो, वापारियुनि ऐं शहरनि बदमनी ख़िलाफ़ रैली कढी, थाणे आॾो धरणो हयो। मुज़ाहिरनि जो चवण आहे त कपड़ा तब्दील न करे ॾियण ते दुकानदार खे तशद जो निशानो बणाए भंडरा कई वई आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं और

0: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, भुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525780

0: कैसे हैं? मैं तो नहीं कहती हूँ टॉपिक पप्पो पप्पो ओके ओके समझने के लिए जमाने लगेंगे। और शब्द लिखते हैं कि आप नुसरत का सॉन्ग जरूर सुनाना, आज भी ऑफिस से सुन रहा हूँ आपको। जी जी मैं बिल्कुल आपको नुसरत का गाना अच्छा से सुना दूंगी। और आहद भाई कहते हैं हम भी आ गए, बहुत शुक्रिया आहद भाई। और अलीशा आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ओके हो गया जी। और किशोर भाई कहते हैं कि टॉपिक आंसर ओके हो गया जी। और फहीम भाई कहते हैं यहाँ के टॉपिक का ये जवाब है, ओके जी ओके। थैंक यू वेरी मच फहीम भाई, आपको भी खुश आमदी। चाचा खालिद कहते हैं कि मैं आपके शो का हिस्सा हूँ, इससे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से मुझे झंडो मरी वाले जुदा नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे झंडो मरी वाले आपको क्यों जुदा करेंगे भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम से? आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में इस तरह इजाफा लाएगी कि भाई दुनिया देखती रह जाएगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और तारिक भाई कहते हैं तारिक भाई इज वॉचिंग अदी सिद्रा। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा कि हमारे प्यारे तारिक भाई भी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलनी चाहिए, तो मैं आपको तारिक भाई का नंबर बताती हूँ ना प्रोग्राम के अंदर, तो उसके ऊपर आप राबता करके तारिक भाई से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तारिक भाई आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपने कहाँ से परचेज करनी है, या फिर अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही तो तारिक भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा देंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे तारिक भाई हैं, तो उनसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा और उन्हें मसला बताइए कहाँ कहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं मिल रही है, या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है डी स्किन का फेस वॉश नहीं मिल रहा, तो वो भी अवेलेबल करा देंगे। चलिए जी बाकी बातें हम जो है वो बाद में आकर करते हैं। यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30 p.m. This
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ गिलो। पेश आहे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान, व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी। बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सा इस्तेमाल करियो व्हाइट एश ब्यूटी सोप। व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दी मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड।

0: मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की महफिल,
6: GFM 88 की आवाज।
5: GFM 88।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मांतली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है जनाब जी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करके अपने खूबसूरत से चेहरे को मजीद खूबसूरत प्यारा और ब्यूटीफुल बनाएंगे। अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में मिलनी चाहिए तो वो आपको बताते हैं नंबर जिसके ऊपर आप राबता करके अपने करीबी जनरल स्टोर के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराते रहेंगे। अच्छा उन खां अलावा अगर तहां प्रोग्राम जो हिस्सो थो पाया तो तहां फेसबुक पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा कयो इन खां अलावा कमेंट करे मुखे बुधा तो तहां से गड मौजूद है और जेके मानो असानी पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा ना थोड़ा सा फायदो ही पहुंचंदो है तो खोड़ सारी मानन के असा बुधाए सकदा तो बाबा साईं तहां भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सको था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तहां जी खूबसूरती जलाए भी डाढो जरूरी है। बिल्कुल जी, अगर खूबसूरती की बात हो स्किन केयर को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। आजकल हर कोई चाहता है कि भाई उसकी जिल्द जो है वो साफ सुथरी नजर आए, नरम और फ्रेश महसूस हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ खूबसूरत नजर आना काफी नहीं होता बल्कि आपकी स्किन को रोजाना वक्त देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अपनी ब्यूटी के रूटीन के अंदर आपने शामिल करना है डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप जानेंगे ना तो ये चीज जो वाजे हो जाएगी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी स्किन को ना सिर्फ खूबसूरत बनाएगी बल्कि आपके चेहरे पर जितनी भी ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना वो सारे दूर हो जाएंगे। क्योंकि रोज में अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर जो है ना वो तमाम चीजें ऐड की गई है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। जैसे कि विटामिन ई बीट्स हैं, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन है, अल्फा आरबुटीन है, कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है, ये तमाम चीजें ऐड की गई है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर। और सबसे बेहतरीन और सबसे जबरदस्त बात है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम को उन तमाम डॉक्टर्स ने मिलकर तैयार किया है जो आपकी स्किन से रिलेटेड फार्मूले तैयार करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए जिसे आप लगाएं तो आप खूबसूरत तो हो जाएं लेकिन आपके चेहरे की हिफाजत जो है ना वो बाकायदा से होती रहे तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम से भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से ये होगा जनाब कि आपको जो खूबसूरती मिल चुकी होगी ना वो हमेशा आपके चेहरे पर बरकरार रहने वाली है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज भी आप याद रखिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूला से मुराद ये कि भाई इसके अंदर ये जो विटामिन ई बीट्स और माइक्रो बीट्स डाले गए हैं ना ये आप लोगों को देते हैं जनाब फेशियल वाले रिजल्ट्स।

यानी कि जब आप डीस्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके होंगे तो आप लोगों को महसूस होगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर चुके हैं और आप लोगों को ऐसा फील होगा कि भाई आप जो हैं कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं। लेकिन ये कमाल डीस्किन ब्यूटी क्रीम का होगा और डीस्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना सिर्फ और सिर्फ 2 रातों में आपको बेहतरीन से बेहतरीन वाले रिजल्ट दे रही है। तो डीस्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप मर्द हजरात भी कर सकते हैं, आप खवातीन भी कर सकती हैं। हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है, यानी कि अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप हो, सेंसिटिव स्किन हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, हर तरह की स्किन के ऊपर आराम से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज किया जा सकता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। तो जाइए और परचेज कीजिए, इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अच्छा हाँ, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के क्या तरीके कार होने वाले वो बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ साथ आपको डी स्किन फेस वॉश के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश लाजमी परचेज कीजिएगा। फेस वॉश भी लगाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाइए, दोनों चीजें साथ में लगाइए ताकि आपको रिजल्ट्स मिले ऐसे जैसे आप हासिल करना चाहते हैं। ओके जो ना खाइलावा डी स्किन जो फेस वॉश है ना बाबा, इन जे बारे में थोड़ा तांगे बुधाई दी हला तो डी स्किन जो फेस वॉश जो है जे अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड कयो वयो आहे। आई हाइलोरोनिक एसिड सीरम जो हों ना यो एतरो फायदेमंद हों तमाजे स्किन जे लाए, जो तमाजे स्किन जे अंदर ताई वेंदो आ तमाजे स्किन के हाइड्रेट रखंदो आहे, तमाजे स्किन के मॉइस्चराइज रखंदो आहे, आई तमाजे स्किन के डीपली क्लीन रखंदो आहे। छो तो खोड़ सारा मानो इड़ा हुंदा ने जेके पांजी डेली बेसिस जेका जिंदगी तमा गुजारियो था उन जिंदगी में खोड़ सारा मसरूफ हुंदा ने तमा जा कमकार इड़ा हुंदा जो तमा के बाहर वणणो पंदो आहे आई तमा जे चेहरे ते इलाही गंदगी जमा थी वेंदी आहे, मिट्टी हुंदी आ, धूल हुंदी आ, पोल्यूशन दिसो था जो केतरो आहे। त उन सबनी चीजन के अगर तां खत्म करण चाहियो था, पांजी स्किन के क्लीन आई फ्रेश रखण चाहियो था त तां डी स्किन जो फेस वॉश ट्राई करे सको था। डी स्किन जो फेस वॉश जेको आहे ना ही भी तमा जे लाइ मार्केट में अवेलेबल थी चुको आहे। सो तमा अॼ ई वणियो पांजे करीबी जनरल स्टोर सां मालूमात वठो, अगर नथो मिले तो अगर मगर के सजो जो नंबर तांके बुधायो आ ना उन नंबर ते बस ताकड़ी कॉल करे वेठो या एकड़ो मैसेज करे वेठो आई उनके बुधायो तो तमाम भी इस्तेमाल करण चाहियो था डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई डी स्किन फेस वॉश लगाईंदा रहो आई सोना थींदा रहो। उनका अलावा जेके जेके सोना मानो असके बुधन पया सबनी के चोंदा बाबा मोहब्बतु आइन ताजो प्रोग्राम ताजो पंजो आ आई इन सोने प्रोग्राम में तमा असके ज्वाइन करना वणो पया 8881 ते आई फेसबुक ते। अच्छा फेसबुक ते बिल्कुल तमाम जा प्यारा प्यारा कमेंट्स प्यारा प्यारा मैसेजेस मुखे मिलना वन था। आई अज सवाल जो वहां का पूछो आयो बिल्कुल यो पूछो आयो तवा मुखे बुधायो वो क्या चीज है जिसका पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी वो खाती रहती है और खाती रहती है। उन्हें का अलावा एकड़ो गानो हलायो आ गानो बुधू था आई तमा छा था जो मैसेज तरफ अचू था पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो अजू कंजूस न्यू कयू था।

0: to gangster Gloria. Kahe mujhe duniya, can you handle the heat? Zara bach ke karach ke dikha do.
1: Kya baat hai?
0: Kahe mujhe duniya.
1: ओके जी, ये है गैंगस्टर गुड़िया और इसको ये दुनिया बोलती है। अरे भाई, दुनिया ऐसा क्यों बोलती है? आप ऐसा कीजिए जरा, आप मुझे बताइए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपने किया या फिर अभी तक रहता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। वो कैसे? वो ऐसे ही जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके जी, यहाँ पर आहत भाई कहते हैं कि तमहा कर रहे हैं। हाँ हाँ भा, बिल्कुल खादी हुआ है मैं। और हबीबुल्ला लगाई भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और हबीबुल्ला भाई कहते हैं माशाल्लाह योर शो, थैंक यू वेरी मच। और चाचा तमाम लिंक शेयर किया, बिल्कुल तमाम जो गानों हलायू था। और सफदर लिखते हैं थैंक्स डियर, बहुत शुक्रिया। और हिदायतुल्लाह कहते हैं इतनी खामोशियां क्यों होती हैं तेरी आगोश में एक कब्रिस्तान, लोग जान देकर तुझे याद करते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। आहत भाई कहते हैं कि आपदा परवीन जो गानों तमाम अन्या ताई ना ही बुधराय एडी नाराजगी आए छा भला न न भा न भा नाराजगी वरी तमाम सोनन भाईरन सा छो कंदासी तमाम के बिल्कुल गाना बुधराई नासी पर एक छरता तो तुम असानी पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा रहो। आई मुख्य बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर अना ताई को डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाम जी करीबी जनरल स्टोर से मिली रही है या को न मुख यो भी लाजमी बुधाए जो ठीक है। गुड़िया अब बुढ़िया हो चुकी है न बाबा, गुड़िया के बुढ़िया थे में अना थोड़ो अरसो लगन। अच्छा, दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। चंदा जानी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं स्वीटी? अच्छा, नूर फातिमा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम नूर फातिमा, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अर्ज मोहम्मद गोला भाई में सुन रहे हैं शहर जेकब आबाद से, भाईजान खुशामदीद। अच्छा, तारिक भाई लिखते हैं कि अदी सिद्रा अली नवाज भाई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अली नवाज भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं। अली नवाज भाई आपको वेलकम। यो हलवाल डी स्किन ब्यूटी क्रीम खपे थी कौन मानू वठन था कौन नथा वठन बुधायो तो सही कुटकी नो बाबा मानन के छो नथा वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एडी भली क्रीम तां के बुधाया थी तो तां नथा वठो या सदा जका न या सरासर ना इंसाफ या डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जको फायदो आ ना ओ तां के मिलंदो आई जदी तां इस्तेमाल करना तां के खबर पंदी बाबा सिद्रा एतरो छो बुधाए थी आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को मेडिकेटेड फार्मूला है ना के डॉक्टर्स ठायो आ है तो तमा के या भी टेंशन करन जी जरूरत ना है तो बाबा असन जी स्किन खराब थी सके थी या असन का भी क्रीम ना हूं लगाईंदा तो तमा अगर का भी क्रीम ना हूं लगाईंदा तो तमा एक दफो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करी देसो आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा सब नी जलाया है यानी कि मर्द मायो हर को हणी सके थो।

अच्छा दर्दे दिल लिखती हैं कि आंखों में ठहर गया वो शख्स है जो हकीकत में कभी हमारा था ही नहीं। आईली सब दिल लिखते हैं कि माशाल्लाह मेरे साथ मुख्तियार मंगी भी आपका शो सुन रहे हैं, उन्हें भी वेलकम कर दें सिडो। मुख्तियार भाई को वेलकम कहते हैं दिल से, बहुत रिस्पेक्ट है भाई के लिए, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और लिखते हैं कि मुख्तियार भाई को मैं अपने पैसों से डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले दूंगा, जरूर आप उन्हें लेकर दीजिएगा। मुख्तियार भाई को भी बोलिए कि वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहे, उन्हें पता चलेगा भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है वो कितनी कमाल की प्रोडक्ट है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा के जब वो गाने बनाएंगे ना तो आए हाय छा जाएंगे।

हाँ जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से। और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं मुझे बताइएगा, और कौन कौन लोग हैं जो हमारी भाई इस महफिल में बैठे हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं। क्या बात है भाई, हाथ मत दिखाओ। अच्छा फहीम भाई कहते कि झंडोमरी वालों को सलाम। ओके जी, सलाम आपका पहुंच गया है। अखलाक भाई आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, क्या बात है। नूर फातिमा कहती हानी मेरी एक बात सुने। जी जी बोले, कहते हैं अम्मी को सलाम कह रही हैं। अम्मी अच्छा मुझे सलाम कह रही, बहुत शुक्रिया अम्मी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फरवा ने टॉपिक का जवाब दिया है, टॉपिक इंसान और उसकी लालच। सही है भाई। और मोहम्मद जुमान भाई कहते बुआ आज प्ले करें ये वाला गाना, मैं बिल्कुल आपके लिए लगाती हूँ, एक मिनट जरा सब्र करें। और नूर फातिमा आपने भी गाने की फरमाइश कर दी है, मैं देखती हूँ जी जितने गाने लगा देंगे। और रशीद भाई हमारे साथ मौजूद है, रशीद भाई हमें हैदराबाद से सुनते हैं, वालेकुम अस्सलाम। रशीद भाई आपको हैदराबाद में भी टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है तो परचेज कीजिएगा। अच्छा दर्दे दिल ने लिखा है कि चंदा आज एक सॉन्ग प्ले करना, डेडिकेट आयशा एंड माय सिस अलीजा एंड यू। शो सुन रहे हैं, शमनी मिलारी का है एक यार मुंह कयो हो, एक यार मुंह कयो हो, चले यो मिलियो तो हलाय वठूंदा। ठीक है, इन का अलावा तमा अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो पिया तमाजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे, पर डी स्किन जो फेस वॉश अञा ताई अवेलेबल कोन थियो आहे, त डी स्किन जो जेको फेस वॉश आहे न वो भी तमा अवेलेबल करायो पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से। ऐं हाणे इहा आसानी त तमा बिल्कुल आहे त तव्हांखे नंबर ॿुधायो वञे थो, ऐं नंबर ते तमा राबतो करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन जो फेस वॉश हुजे अवेलेबल कराए सघो था। सो अवेलेबल करायो बाबा, आसानी थी वेंदी तव्हांजे लाइ।

अरे क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना हमने एंजॉय किया। और चाचा लगते हैं कि ये तो बड़ा दिलचस्प सवाल है, इसका जवाब है क्योंकि वो चीजें खाते हैं जलती है मगर कभी। ओके ओके ओके, आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है जी, बहुत बढ़िया। और न का अलावा चौथा आपके टॉपिक का बस सही है, एक आंसर सही था। बहुत ज्यादा मत दीजिए। आई तो हमारी झंडू परिवार के सलाम बढ़ना, ठीक है जी, ठीक है। और ये हमारे साथ ही जी भाई पंजल सुमरो, बॉबी खोड़ो और चाचा अब्दुल्ला आपको सलाम दे रहे हैं, उनका भी आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। सभी ये पुराने लिसनर्स से हमारे वेलकम कहते हैं।

भाई यो कमाल था डीज कैन ब्यूटी क्रीम जो अदे ही गानों डेडिकेट भी मानों की कई वाइस के डीज कैन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर पाया अच्छा छाता चो कराची में डी स्किन जो फेस वॉश कोने तो मिले तारिक भाई के चो तारिक भाई के बिल्कुल चो था कराची में तवाज लाए डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराई छींदा हिदायतुल्ला कहते हैं कि आज आवाज कम है सॉन्ग की तुम्हारी तो सही है लेकिन गाना चलाते हो उसकी आवाज कम है सच्ची बताए अब सही है या अभी कम आ रही है।

एतिरो सोनो थी वियो आहे हाणे गुलाब बि तोखे ॾिसी शर्माइनि था. इहो कमाल बाबा टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो अथव, अवां बि लॻायो टी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं अवां बि सोणा थी वञो. छा जो इंतज़ार था कयो. अच्छा फहीम भाई कहते कि झंडो मरी वालों को सलाम के साथ मुबारक भी हो क्योंकि झंडो मरी में टी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली थी. ओ यहा गाल कई ना कम मजी. तव्हां बि अवेलेबल कराए सघो था. पोस्ट खे लाइक शेयर कयो अथव कोन. अॼु कंजू कंजूसियूं कयो. अॼु उमरु हमारे साथ हैं कहते सलाम सिद्रा मुस्कान मुलैल इस्लाम अदर फ्रॉम DIG ऑफिस लाड़काना से. आज कोई शादी वाला गाना सुनाए. ओके जी, शादी वाला गाना आपको सुना देते हैं. क्या याद करे कहते अदा गुड़िया भी करे न दिल जी रानी हुई हाणे कोने छा थियो अथसि भला हाणे. आहाद भाई बहुत शुक्रिया आपका. लालू भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया. लालू भाई को प्रोग्राम पसंद आ चुका है. अच्छा वही वफाई भाई, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सिद्रा जी क्या हाल है आपके. माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम राम जी का बाबा से आपके साथ है. बहुत शुक्रिया भाई. अच्छा ऑनलाइन का मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन

0: फेस वॉश मिल रहा है या फिर नहीं, ये हम पूछ कर बता देंगे। या फिर आप नंबर जो बता रहे ना उसके ऊपर रब्ता करके आप खुद ही मालूम कर लीजिए कि भाई ऑनलाइन आप सेल कर रहे हैं या फिर नहीं। ये जो दोबारा से उनको जवानी मिली है ना, ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है। हाँ भाई ने टॉपिक का जवाब दिया है। ओके अखलाक भाई बोले बोले क्या कहना चाहते हैं। निदली कहती है कि यादा यादा सिंधी गानों प्ले कर हाजिर कयां दे। अरे अदा कहती है अदा हथ मथे करे छड़ियो वा हाँ ये न चेजा तो हिक ओनली तव्हां हथ मथे कयो। हथ मथे कंदा त ख़बर पवंदी त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो था। ऐं अगरि ॿई हथ मथे कंदा त ख़बर पवंदी त तव्हां गॾु डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां फेस वॉश बि इस्तेमालु कयो था। सो हाली हिकु हथ मथे कयो अथव, मूंखे ख़बर आहे त अञा ताईं फेस वॉश जो यूस कोन कयो हूंदो, छो त फेस वॉश अञा ताईं सभिनी जॻहि ते अवेलेबल न आहे थियो। सो जॾहिं फेस वॉश बि अवेलेबल थी वञे तव्हां इस्तेमालु कयो त पोइ ॿई हथ मथे कजो, ठीकु आहे। हाली हिकु हथ मथे करे मूंखे ॿुधायो त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो था जे थोरी दिलि खे टेक।
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia jo show. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM network par KTN News.

करज़ाई चयो आहे त ट्रम्प दलदल में फासी पियो आहे। ईरानी तजवीज़ूं अमेरिका वटि पहुची वियूं आहिनि। फ़ैसिलो ट्रम्प खे करणो आहे। ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटार न कंदो। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपी के बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन। चार दहशतगर्द मारिजी विया। हथियार हथ कया विया आहिनि। केपी के इलाइक़े में मीर अली में फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। टांक में पटवार खाने खे टारगेट करण जी बि कोशिश नाकाम। पंहिंजे ई बम फाटण सबबि हिकु दहशतगर्द जहनम भेड़ो थी वियो। बलूचिस्तान जे सोराब ज़िले में बि फोर्सिस जे हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई कई वई। हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां केपी के बलूचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयुनि ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई। मोहसिन नक़वी चयो त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा। गंबट भरिसां आरिजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में पैसनि जी ॾेती लेती तां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल, ॿ ज़ख़्मी। बारो शहर में धुरियुनि में पैसनि जी ॾेती लेती तां झेड़े दौरान फायरिंग थी। गोली लॻण सबबि अजीब वारी जो मारिजी वियो आहे। ॿ ॼणा ज़ख़्मी थिया आहिनि। लाश ऐं ज़ख़्मीनि खे अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। मीरू ख़ान जे सजावल जुणे जो थाणे जी हद में मुबैना पुलिस मुक़ाबिलो। साथियुनि जी फायरिंग में हिकु ॾोहारी मारिजी वियो। पुलिस मूजिबि लुकमान लाड़ी वटि पुलिस ॾोहारियुनि सां मुक़ाबिलो थियो। मुक़ाबले दौरान साथियुनि जी फायरिंग में बदनाम ॾोहारी इम्तियाज़ जतोई मारिजी वियो। वारसन जो इम्तियाज़ जतोई खे पुराणी दुश्मनी तां क़तल करण जो इल्ज़ाम आहे। निजी क्लिनिक्स हलाईंदड़ डॉक्टर्स जो FBR पारां पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम लागू करण ख़िलाफ़ सूबे में क्लिनिक्स बंदि करे एहतजाज। कराची, हैदराबाद, खैरपुर ऐं ॿियनि शहरनि में डॉक्टर्स एहतजाजनि क्लिनिक्स बंदि रखियूं। डॉक्टरनि मेडिकल सेंटर ऐं क्लिनिक्स बंदि करे ॿाहुनि ते कारियूं पटियूं ॿधी एहतजाज कयो। डॉक्टर्स मूजिबि तिबी ख़िदमतनि ते FBR जो पॉइंट ऑफ सेल वारो निज़ाम कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। AI खां पीउ खे क़तल करण जो तरीक़ो पुछंदड़ जवाबदार 14 ॾींहनि जी रिमांड ते जेल हवाले। पुलिस जवाबदार खे लाहौर जे मक़ामी अदालत में पेश कयो। जांच आफ़ीसर अदालत खे ॿुधायो त जवाबदार वालिद जो अकेलो पुट आहे। वालिद मूजिबि संदसि पुट उबती सुबती जांच कंदो रहंदो आहे। अदालत जवाबदार खे रिमांड ते जेल मोकिले छॾियो। गढ़ी हसन में 6 महीना अॻु क़तल कयल ॻोठाणे जे कातिलनि जी गिरफ़्तारीअ लाइ वारसनि जो एहतजाज। ॻोठ अब्दुल रहीम खोसो वासिन ॿारनि समेत हादी बख़्श खोसो जे खून सां इंसाफ़ लाइ एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन मूजिब कातिलनि खे बासरनि जी सरपरस्ती हासिल आहे। सरेआम हथियार खणी घुमी रहिया आहिनि। मंज़ूराबाद वेझो मांझंदि में वापारियुनि ऐं शहरनि जे पुलिस जे नाजाइज़नि ख़िलाफ़ शटरबंद हड़ताल। थाणे आॾो धरणो आयो वियो। वापारियुनि ऐं शहरनि बदनाम बदमनी ख़िलाफ़ रैली कढी थाणे आॾो धरणो हयो। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-24-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियणु, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-34-95-244।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
4: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125257 86।
4: जी हा 2315525786।
5: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं ZFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो, मीरपुर खास मटियारी, सकरन मेहरापुर माथली, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो हमें जरूर बताया करें कि आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, आपका फीडबैक क्या है। और इसी के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई हम इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे एरिया में नहीं मिल रहे हैं, भाई साहब ये कौन सी बड़ी बात है, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल भी करा सकते हो। वो कैसे अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को नंबर ऑलरेडी बता दिया जाता है जिसके ऊपर आप राबता करके इजीली अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा सकते हैं। तो अवेलेबल कराते रहिए, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखिए और साथ ही साथ नंबर जरा नोट कीजिएगा, नंबर आपको बता रही हूँ, नंबर से जनाब 03-12-50-25-907 बड़ी 312 पंजाह पंजवीह 970 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-27-38-4309 बड़ी 332 73-84-309। ही नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश खे अवेलेबल कराए सघो था। सो अगरि हिकड़ी ॻाल्हि इहा बि अची वञे थी त तव्हां अगरि अञा तव्हांजी उमिरि नाहे थी या फिर तव्हां क्रीमूं न आहियो इस्तेमालु कंदा त पोइ तव्हां मां इहो त तव्हांखे लाज़मी चवंदो त तव्हां हिकु दफ़ो जेको आहे न डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे यूज़ ज़रूर करे ॾिसो, ट्राए करे ॾिसंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे उहो सफ़ा रेग्युलर जेके तव्हां नाइट क्रीमूं लॻाईंदा आहियो उन्हनि जहिड़ी त बिल्कुलु बि नाहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे ही बाबा मेडिकेटेड फार्मूलो आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ॿ रातिन जे इस्तेमाल में सफ़ा भलो रिज़ल्ट ॾेई सघे थी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे अंदर वाइटमिनी बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन जी एडिशन कई वई आहे। ऐं ही वाइटमिनी ई बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स जेकी आहिनि ही बाबा महंगनि महंगनि फेशियल्स जे अंदर एड कया वेंदा आहिनि। ऐं जॾहिं तव्हां पूरे पाकिस्तान में रिसर्च कंदा त पूरे पाकिस्तान में ही वाइटमिनी बीट्स ऐं माइक्रो बीट्स जेके आहिनि सिर्फ़ ॿ या टे प्रोडक्ट आहिनि उन्हनि जे अंदर एड थियल आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम उन्हनि मां हिकु आहे। सो पूरे पाकिस्तान में हिकिड़ो तमामु ज़बरदस्त क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं पाकिस्तान में ॿाहिरि जे मुमालकत में बि तव्हांखे मिली रही आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको कमाल आहे न उहो तव्हांखे तॾहिं मिलंदो जॾहिं तव्हां इस्तेमालु करे ॾिसंदा। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे बाबा एतिरी ज़बरदस्त क्वालिटी जो प्रोडक्ट आहे, तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा ॻाल्हि बि आहे, निशानी तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जॾहिं तव्हां परचेज़ कंदा त ख़ासि करे जॾहिं दुकानदार तव्हांखे थोरो चूनो लॻाईंदा आहिनि, दुकानदार चूनो लॻाईंदा आहिनि त बाबा उन वटि अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल न हूंदी, तव्हांखे तव्हां ॻोठ खां असांखे ॿुधो पिया त तव्हांजे एरिया में डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले, त दुकानदार वरी तव्हांखे का ॿी क्रीम ॾेई छॾींदो, चवंदो बाबा ही डी स्किन ब्यूटी क्रीम अथव हीअ खणी वञो। ऐं तव्हांखे वरी ख़बर न हूंदी, तव्हां पढ़ियल न आहियो या तव्हांखे समुझ न आहे, त तव्हांखे इहा निशानी ॿुधायां त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा निशानी अथव बाबा जेका सफ़ा घणी मशहूरु आहे, त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डबी जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे। ऐं डॉक्टर माई जो फोटो ॾिसी करे ऐं वॾनि वॾनि अखरनि में डी स्किन ब्यूटी क्रीम लिखियल अथसि, इहा चीज़ जेका आहे तव्हां इन जी नोट करे वठो। ऐं जॾहिं तव्हां वञो दुकानदार वटि त हुनखे चओ बाबा असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾे, ऐं जॾहिं डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे ॾिसो त इहा चीज़ पक कयो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे हुन जे डबी जे मथां डॉक्टर माई जो फोटो आहे। ऐं डॉक्टर माई जेका आहे बाबा निशानी तौर असां ॾिनी आहे जीअं तव्हांखे ख़बर पए त डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिकु मेडिकेटेड यानी कि हिन जे अंदरि को था। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, सुहिणा सुहिणा थी वञो, पल पल थी वञो, ऐं पंहिंजो जादू जेको आहे न सभिनी खे ॾेखारियो बाबा त हाणे तव्हां बि पंहिंजी स्किन जो ख़्यालु रखो था, हाणे तव्हां बि सुहिणा थी विया आहियो। ऐं हा इहा ॻाल्हि त विसरी वई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो जेको रिज़ल्ट आहे न उहो तव्हां सभु हासिल करे सघो था, चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो। सो अगरि आप मर्द हज़रात हैं और ये सोच रहे हैं कि भई हम लगा सकते हैं या नहीं, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आप सब लोगों के स्किन के हिसाब से तैयार की गई है, इसे ऑल स्किन टाइप के लिए बनाया गया है। या आपकी स्किन कितनी ही सेंसिटिव क्यों ना हो आप लगा सकते हैं, ये चीज जहन में रखे कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी शामिल करेंगे। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना जनाब, ये बड़ा कमाल का है, ये इतना प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश बना है ना कि भाई आप देखेंगे तो कहेंगे भाई

प्रोडक्ट होते हैं ना उनके अंदर एड किए जाते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश के अंदर भी हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, डीपली क्लीन करता है और आपकी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज रखता है। तो इस्तेमाल कीजिएगा डी स्किन फेस वॉश, 2 से 3 मरतबा आप दिन में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सुबह को लगाया, दोपहर को लगाया, रात को लगाया,

भई गानो तो बदा डींदासी पर हेते पैनल से खोड़ तमा जा मैसेज जमा थी वया एंड सो पैनल जी तरफ भी अची बैठू था। ये हमारे साथ मौजूद है मौला इस्लाम मदद, झंडो मरी खां, अली हसन खास के लिए, मंजूर अली खास के लिए, गुल बहार खास के लिए, यार मोहम्मद खास के लिए भाव तमा जो मोहब्बत हुआ बाबा प्रोग्राम पसंद कयो पया ही ता प्रोग्राम जो हिस्सो भी बनजी वया है। उनका अलावा हमारे साथ है मकसूद मला के दे सिद्रा मुस्कान, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रिजल्ट अमीरों वाला एहसास दे चुका है और मैं खुद अब अमीर लगता हूँ सही समय का ये मीर क्या अमीर लगते हैं। और सिद्रा मैंने सुना है आपकी साइड में जैतून डाढ़ा थी ना है ना, आपका तो अपना बाग होगा। हाँ हाँ जैतून डाढ़ा

अच्छा गो टू नूर मोहम्मद कोरकानी से फ्रॉम कादिर बख्श कोरकानी हमारे साथ हैं। कहते प्रोग्राम वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया कादिर भाई तांचो मोहब्बत वन प्रोग्राम बुधो पया। महबूब अली हमारे साथ हैं मोरो सिटी से, कहते कौन से वेलकम खुश आमदी सिस्टर, वेरी नाइस योर शो वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स कुंज, हमें सॉन्ग सुनाए हदीका क्याने का, सो नाइस ऑफ यू। ओके मैं हदीका क्याने का कोई भी प्यारा सा गाना आपको डेडिकेट कर दूंगी। ये हमारे साथ सावल ढीलू फ्रॉम मोरो फ्रेंड अब्दुल रजाक को सलाम देना चाहता हूँ, एंड प्लीज प्ले शमन मिराली रात खामोश आ चंद्र मधोश, माँ भाजी पसंद हलान जी फुल कोशिश करना। और चाचा खालिद हमारे साथ है पैनल पर। ओके चाचा तांजो गानो तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुकून से गानो बुधंदी, ठीक है छो तो तांजो गानो कुछ जड़ो है। ओके जी घोटकी से गुलशेर मंगरू हमारे साथ है, सिस्टर सिद्रा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सिस्टर सिद्रा, मुझे गाना सुनाओ मुमताज मलाई का सॉन्ग है। अच्छा गानो लिखियो सही में कोशिश क्या थी ताजो गानो बुदना सी। गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू, आपका शो वेरी नाइस है, सलाम आपको जी, वालेकुम अस्सलाम आपको। और ये हमारे साथ हैं जियो चाचा खालिद जियो झंडो मरी खां अली हुसैन खास के लिए, मंजूर अली खास के लिए, गुलबहार खास के लिए, यार मोहम्मद खास के लिए भाई, साथ हुआ भला तामे का डील बिल थी आए डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया था कौन झंडो मरी वाला हाल हवाल तो यो। अच्छा मकसूद मल्हा कहते हैं सिद्रा कितना मुश्किल सवाल कर दिया है कितना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको जवाब ना दे सकूं जवाब जो तुम दिनों आ न बाबा, यो पढ़ने जड़ो आ पर छा कयूं पढ़ी न था सकूं।

मुझे ख्याल है मैं सही जवाब नहीं सुनी हुआ है। अच्छा अल्ताफ कोसू जाग जानी चाचू कहते हैं प्लीज प्ले। अच्छा गानो लिखी हुआ ही डेडिकेट बिस्मिल अजरा कोसो एंड मी थैंक्स चाचू थैंक्स। महबूब अली मोरो सिटी से कहते हैं अच्छा जवाब दिनो हुआ है सही सही सही। गोटकी से गुलशेर मंगरियो सिद्रा गाना जो लिखा है वो सुनाओ। हाजिर हाजिर हाजिर। अब्दुल्ला महर भाई मीरपुर खास से कहते हैं डेडिकेट माई सिस्टर साइमा मीर को एंड सिस्टर दर्दे दिल को निदा अली डेडिकेट आपको सॉन्ग होमेरा चन्ना। ओके अब्दुल्ला भाई अज मतलब डेडिकेशन सेंड करे छो। सही है सही है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो था न हबीबुल्ला थेबू कहते हैं शो तमाम लाजवाब आए थैंक यू वेरी मच प्यारा भा। मुनवर मुगल आ चुके हैं कहते हैं सलाम बेना सिदरा मुस्कान और लाड़काना वालों को। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई कभी कभी आकर ऐसे बिल्कुल सलाम दुआ किया करें। क्या हाल चाल है ठीक ठाक है मजे में। और वरियाम अली हमारे साथ कहते हैं सिदरा है ना प्यारे शो में दिल सा सिक सा सलाम था कयूं एंड वीआईपी सफा शो आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जियो करे बिल्कुल बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल ही अलाए चाहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना वारन का तो पूछो।

बाबा अगर तव्हां जे घरनि में बि शादी आहे या तव्हां जी शादी थी रही आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे न विसारजो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो जीअं तव्हांखे उहे रिज़ल्ट्स मिलनि जेके तव्हां हासिल करण चाहियो। चहिरे ते एॾो वीआईपी नूर अची वेंदो, तव्हां खां माण्हू पुछंदा ॿुधायो त छा इस्तेमाल कयो अथव, कहिड़ा फेशियल कराया अथव, ऐं तव्हां हुननि खे चओ बाबा फेशियल जो टाइम असां वटि त कोन्हे को, शादी जो घर आहे, इलाही सारा कम हूंदा आहिनि। तव्हां बसि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा, तव्हांखे मिलंदा उहो रिज़ल्ट जेको सफ़ा महांगा महांगा फेशियल कराइण खां पोइ तव्हांखे मिलंदो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इहो कमाल अथव।

ओके क्या बात है, गाना तो बहुत कमाल का था, हमने एंजॉय किया। और यहाँ पर फराज देहरी हमें सुन रहे हैं, उसामा और फराज की तरफ से सलाम वालेकुम अस्सलाम, भाइयों को वेलकम हो गया।

हाथ भाई लिखते हैं कि असां डोडियूं भी पांचियूं कयूं आहिनि. अल्लाह वाह साईं वाह तरक्की आहे वियो छा. हां गुलाबी जोड़ी जी वाकई वाई बची पई वीडियो भी ओड़ो होयसि. अच्छा शब्द लिखते हैं कि नाई जब आप सॉन्ग के बीच में बात करती हैं तो अच्छा लगता है. कुछ मानो उनकी वरी सुठो ना लगंदो पर असां के भलो लगंदो आहे. ॻाल्हाईंदासीं न विच ते त पोइ बाबा ही तव्हांजा मैसेज केरु पढ़ंदो. डीस्किन ब्यूटी क्रीम जे बारे में केरु ॿुधाईंदो.

बिल्कुल जी, याद आ। और अखलाक भाई कहते हरू भरू हथ मथे कराया थी, हरू भरू कोन कराया बाबा, खबर पई तो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर। अमानुल्लाह दल हमारे साथ ही, वालेकुम असलाम भाई।

मिदड़ी लिखती है कि हीरा हाशमी माय फ्रेंड, मैं क्यों भला पीछे रहूं, ओ यहा गालम। अच्छा, हमारे साथ उसामा और फराज हमारा शो रोज सुनते हैं, बहुत शुक्रिया उसामा और फराज, आप दोनों को वेलकम कहते हैं।

0: याद आया
1: भाई असां के सब कुछ याद आए तां के याद ना आए तो सही आ तां के बस डे स्किन ब्यूटी क्रीम याद हो जे नजर मोहम्मद भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं कहते हैं आपका प्रोग्राम नाइस है शाहिद भट्टी और सिकंदर मक्सी शो सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया जी मालिक अच्छा नजर हुसैन मलिक भाई हमारे साथ हैं कहते हैं लाजवाब प्रोग्राम बहुत शुक्रिया मलिक भाई अली नवाज सारकी हमारे साथ हैं कहते हैं मोहम्मद नवाज जनरल स्टोर ठुल में डी स्किन मौजूद है वाह साई वाह मोहम्मद नवाज जनरल स्टोर ठुल में तव्हां खे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी बाबा तव्हां वञो ऐं वठी अचो अच्छा नज़र मोहम्मद भट्टी भाई छा था चो आज राहत फतेह का गाना सुनाए मां बिल्कुल कोशिश कयां थी ताकि गानो बुधराईंदासीं फरवा कहंदी आहे आपी प्लीज सॉन्ग रिक्वेस्ट था यकीन की आएगी ये रातां कभी मां ॾिसां थी हलाए वठूं था और अलीशी बिरोही हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम सिस्टर आप कैसी हैं आप हमारे साथ मीरपुर बठोरो शो रोज सुनता हूँ लेकिन मैसेज आज किया है गुड हो रहा है आपका शो बहुत शुक्रिया अलीशी बिरोही भाई वेलकम कहते हैं आपको अच्छा हजार जतोई भाई भी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम हजार भाव हजार को लो कराया करा तो डे स्किन ब्यूटी क्रीम वठी अचो सही आहे

अच्छा फरमा की नहीं, अभी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और रिजल्ट VIP मिला है। हाँ जी बिल्कुल, मेडिकेटेड फार्मूला है, इसीलिए तो कहती हूँ सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। निजाम भट्टी कादरी भाई हमें सुन रहे हैं मटियारी खां, निजामुद्दीन भट्टी और अली शेर भट्टी, फरहान अली भट्टी, नियाज मोहम्मद भट्टी, जाहिद भट्टी, फराज भट्टी, बुधू पया अदी, अजय तासांजी फरमाइश पूरी करियो, शमन मिराली जो सॉन्ग बुधरायो, हाजिर शमन हलायूं था। अच्छा चाचा कहते लगा।

0: जे करीबी जनरल स्टोर से वही पुछा कराई सगो था और फराज दहरी भाई जो है वो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर पो वाज सही वायु त कमाल थी वयो यही बाबा तहां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो इते टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो जल्दी मोटी तहां अचूं था तहां कारी न वंजो इते वेठा हुजो मां ओही वनी ओही मोटा थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड इन की लिसनिंग आप सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तावन से तो सुनिएगा और साथ दीजिएगा पूरे पूरे 3 बजे तक
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज है सारे
4: खूबसूरती जो असल राज डी स्किन

की क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप एंजॉय कर रहे हो और साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब। वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ही बात है। बिल्कुल जी, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सखर, मोरो, मिरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली, नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में आ चुके हैं तो तमाम तरह सुनने वाली समातों को वेलकम इन खुश आमदीद कहते हैं। बिल्कुल आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

भाई देख ले ये कितने मासूम है लड़के, शादी का गाना सुनकर ही खुश हो जाते सही पहले जो लड़के बेचारे चाहते कि भी हमारी शादी हो, आप लोग इनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हुई ना तो वजह ये है कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं लगा रहे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप भी इस्तेमाल कीजिए और डी स्किन के फौरन बाद ही आपको क्या ही जबरदस्त और मस्त सा रिजल्ट मिलेगा, जो देखकर आप खुद ही कहेंगे कि भाई ये तो कमाल ही हो गया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप भी इस्तेमाल कीजिए, मर्द हजरात खवातीन हर कोई लगा सके। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की यह खास गाल है तो बाबा ही हर स्किन के मथा लगा सकजन था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है तो का टेंशन की गाली कोने का, ताँ सब मानू लगाए सको था, पांजी खूबसूरती में इजाफो आने सको था। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी यह गाल मुके डाडी सुठी लगनिया था बाबा, इनके हर स्किन के लिए तैयार कयो या ये मेडिकेटेड फार्मूलो है।

जो सदको ही वेंदा जैसे तुम टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करना सो टी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश होती है जनाब, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि भाई खूबसूरत तो हम बनना चाहते हैं, खूबसूरत तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि अगर हमने ये प्रोडक्ट लगा लिया तो हमारी स्किन तो सेंसिटिव है, हमारी स्किन के ऊपर दाने निकल आते हैं या फिर हमारी चेहरे की स्किन खराब हो जाती है, रेड पड़ जाती है या बहुत ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ जाते हैं जो आप नहीं चाहते कि भाई हो, इसीलिए आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए, आपकी स्किन को हमेशा खूबसूरत रखने के लिए, आपके चेहरे पर वो रिजल्ट्स लाने के लिए जो आप हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको मिल सकते हैं जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने के बहुत सारी वजूहत है। सबसे पहली वजह तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स हैं। जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट्स ऐसे मिलते हैं जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये बजाहिर तो नाइट क्रीम है लेकिन ये 2-in-1 फार्मूला है। इसका मतलब ये होता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आप लगाएंगे तो रात के टाइम नाइट क्रीम की तरह, लेकिन रिजल्ट्स आपको फेशियल वाले मिलेंगे। अब इस चीज को मैं जरा क्लियर करती जाऊं कि बहुत सारे लोग अब मुझे ये सुन रहे हैं, कहते भाई फेशियल का रिजल्ट मिलेगा, फेशियल की चीजें इसके अंदर एड है, तो अगर वो लगाएं तो वो क्या इस तरह से लगाएंगे कि जब आप क्रीम अपने चेहरे पर लगाते हैं तो फेशियल की तरह आप मसाज करने ना लग जाना। मसाज ना किया करें। अगर आप कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल करें, कोई भी ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें, तो उसके ऊपर मसाज नहीं करना होता, बस सुकून प्यार से लगा दिया करें। डी स्किन ब्यूटी क्रीम खुद ही आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाएगी, सुकून से लगाइए। हाँ, इसके अंदर चीजें फेशियल वाली जरूर है, लेकिन ये फेशियल नहीं है, इस चीज का जरा ख्याल रखा करें। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को 2 रातें इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत से बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल चुके होंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आप मर्द हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं, खवातीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और नंबर आप लोगों को बता रही हूँ जो डायल करके आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स के ऊपर डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल करा सकते हैं।

डायल कीजिए 0332738439। बड़ी 300 बैटरी है 7384390। ऐं ॿियो नंबर आहे 03-12-50-25-907-5025-907। बिल्कुल जी, नंबर तव्हां डायल करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराए सघो था। अवेलेबल करायो ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो।

0: ओके जी सोना मुझे जा नहीं तू अलाए शागते हो न खा अलावा अगर तवा भी पाने करीबी जन स्टोर से वनो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम लाजमी वठिए जो ठीक है जी कुछ आपके कमेंट्स ऊपर चले गए हैं क्योंकि काफी तेजी से ये ऊपर भागते जा रहे हैं दोस्त अली मलाह हमें सुन रहे हैं ओके जी दोस्त अली मलाह भाई वालेकुम अस्सलाम तांचो मोबतवान प्रोग्राम बुधो पया चाचा कहते हैं सिर लगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम सा ओ ये चाचा हजार भाई कहते हैं कि हाँ सिस्टर जब आप किसी सॉन्ग के साथ पोइट्री रीड करती हो तो और भी प्यारी लगती है ये तो लेटेस्ट न्यूज है अच्छा हजार भाई कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद जियो करे ओ ये बाबा जियो करे निदड़ी कहती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम हलुड़ी एडा दफा लिखी छो अस छोकरी निदा जो सभी की कसर कटी छी सभी जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक निदा पांजे मैसेज में लिखी छो है निदड़ी के कड़ी तवी फिक्र है अच्छा पोस्ट के लाइक शेयर कर अना ती अगर कौन कयो है हाँ जी ले फड़ मेरी बां माइया मैं मिन्नता करा माइया डी स्किन ब्यूटी क्रीम ले माइया
1: मोहब्बत में मजबूर तो ते कुछ मुझे ख्याल कदो कर
0: हाँ जी ख्याल ही ख्याल बाबा तरी तो तांगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधायूं था समझंदा कयो
1: मजबूर तो ते
0: अच्छा ये फराज डहरी भाई कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का क्या कमाल का रिजल्ट मिला है ओ ये बाबा ओ ये ता डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाईंदा रहो और फहीम भाई भी कहते हैं कि सिर लगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम साई न हाँ हाँ परवा कहती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम से असा जो सिर लगे तवां जे करे आपी हाँ बिल्कुल बिल्कुल और हजार भाई कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड वाइट एच दोनों हाँ जी दोनों कदी कदी मुखा वाइट एच विसरी वेंदो पर तहां याद जारे छडींदा आयो अच्छा ही सजो महीनो जो है यानी कि पूरो मंथ थी वेंदो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में प्रोग्राम होंद वरी असा जो नेक्स्ट मंथ में इंदी तो उनमें सागो तला डी स्किन ब्यूटी क्रीम और वाइट एच बिन्हीं प्रोडक्ट के बारे में तक बुधाईदी ठीक है सो हाली तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बुधी वो तबर पड़ी वे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो केडियो केडियो खास गालू आज जी तक मिलन्दू जैसे तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो

अच्छा ताड़ी हाणे त उॾामी वञे अहिड़ो आहे पहिरीं मां हाणे थी कॉमेंट ॾिसां न त पहिरीं खे उॾारियूं हा समझू था अच्छा दोस्त अली मल्हा भाई वालेकुम अस्सलाम तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया निदड़ी कहती कि हज़ार ख़तम बि हो गया हा बाबा हज़ार खुलियो कराए त मिंट ख़तम थी वेंदो आहे और अदर चए थो मूं वटि 500 आहिनि 500 बचा अथई हलड़ी और हज़ार भाई कहते हा ॿ पंज 500 जा नोट खुलिया कराया आहिनि हज़ार इहो बि सही आहे निज़ाम भट्टी भाई कहते हीअं कि जी बिल्कुल तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे पंहिंजे खूबसूरती में इज़ाफ़ो आणे सघो था सो मर्द बि लॻाए सघनि था डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं मायूं बि लॻाए सघनि थियूं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे त जेके माण्हू वरी फेस वॉश जा शौक़ीन हूंदा आहिनि या वरी चवंदा त बाबा असां क्रीम न असां फेस वॉश लॻाईंदासीं त तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश लॻाए सघो था डी स्किन जो फेस वॉश बि सफ़ा मुनासिब क़ीमतुनि में तव्हांखे मिलंदो सो तव्हां वञो ऐं वठी अचो ओके जी ॾाढो भलो असां गानो ॿुधोसीं फ़ाइज़ा जी आवाज़ में हुयो हीउ वारो गानो ॿुधंदासीं ज़ामिन जी आवाज़ में लैला लैला लैला ओ वेली भलो गानो आहे छो त ॿुधूं

आज मेरा मूड था कि कोई सैडी और कोई स्लो सा गाना नहीं लगाएंगे प्रोग्राम में, तो इसी वजह से बस गाने अच्छे अच्छे लगाए हैं। और रमजान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, मदद कहते हैं बहना कैसी हो, शो नाइस है, सॉन्ग सुनाए। तमाम जो गाना तो कड़ी कड़ी मुख्य समझ में ना ही नींदा, सो रमजान भाई तुम मोहबतू हैं प्रोग्राम बुध पाया। निजाम भट्टी ना की प्रोग्राम बनी पो, थैंक यू। अच्छा कामरान भाई कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये सीक्रेट, हाँ जी तुम्हारी खूबसूरती जो सीक्रेट आहे, तमाम भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो एंड नेचुरली खूबसूरत थी वजो। अली शेर बिरोही कहते हैं सिद्रा सिस मैंने आपका शो 10 लोगों को शेयर किया है, अब मेरे लिए एक सॉन्ग प्ले करें। हाँ जी चली गाना ये।

अच्छा मरियाम कहती है तबीयत सही है अब जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मजे में और हमारे साथ ही ये जनाब कहती है शो इज लश पश। अच्छा तव पुछो आए रुखसार कड़ी इंदी रुखसार सुभाणी प्रोग्राम कंदी सुभाणी रुखसार जो प्रोग्राम थिंदो सही आ

अच्छा हाँ जी, एम बलोच मीरपुर खास ही हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया भाई। ओके जी, अब्दुल गफार भाई खुश आमदीद कहते हैं आपको भी, थैंक यू सो मच। कहते हैं लाजवाब शो, हाँ जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम में डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताया जाता है तो लाजवाब ही होगा ना, और मेलसी में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है तो जाइएगा और परचेज कीजिएगा। अच्छा दर्दी दिल कहती है चंदा मैं भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती हूँ, बहुत अच्छी है, अमेजिंग, ओए ऐसे ही लगाते रहिए। और कहती नाइस सॉन्ग शमन का। अच्छा रमजान भाई तमहा शायरी लिखी है, एक दर्द मुसलसल मुझे सोने नहीं देता, दिल सबर का आदि मुझे रोने नहीं देता, मैं उसका हूँ ये राज तो वही जान गया, वो हर किसी का है ये सवाल मुझे सोने नहीं देता। आई अच्छा फहीम भाई कहते हैं कि शबाना कोयल चवंदी आए शादी बर्बादी आए मानो छड़ो भलो आए, वही जो हेडी दुनिया शादी करे थी तो न करे, करे बाबा शादी करे, ये वो लड्डू है जो खाकर भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है, तो मुझे लगता है कि खाकर पछताना चाहिए। ओके तो शाहिद बब्बर का गाना लास्ट में मैंने लगा लिया है जो कि बड़ा अच्छा होने वाला है। और मोहम्मद अली हमें सुन रहे हैं मोरो से, बहुत शुक्रिया। घोटकी से गुलशेर मंगरियो, गाना जल्दी हलाए भुख लगी यार, गाने से भी भुख लगंदी है छा भला। अच्छा किशोर भाई ने शायरी भेजी है, कहते कभी ये दुआ कि वो मेरा है फकत, कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये दुआ कि उसे मिल जाए सारे जहां की खुशियां, कभी ये डर कि वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना कि बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर कि उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजर उसका, कभी ये वहम कि वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरजू कि वो मांगे जो उसे मिल जाए, कभी ये विश्वासा कि उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं। ये शायरी मैंने इतनी पढ़ी है कि मुझे लगता है कि अब मुझे याद ही हो गई है। और बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। बिल्कुल जी, झंडो मरी में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है, आई वाकई यू मां कलई डिठो त हिकड़ी दादी जो नालो किश्वर हुयो, आई उनके दादी ना उनके दादा कोठिन पिया ना दादा। Sounds funny.

न बाबा न चाचो चए थो क्रीम जो मसाज त लाज़मी न मसाज न कजो जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो न त हुनखे आराम सां प्यारनि प्यारनि हल्कनि हल्कनि आङरियुनि सां लॻायो ऐं ईअं लॻायो त क्रीम थोरी थोरी तव्हांजे चहिरे ते नज़र अचे मसाज न कंदा कयो ठीकु आहे ख़ासि करे नाइट क्रीम जेका तव्हां लॻायो था हुन ते मसाज बिल्कुलु बि न कंदा कयो छो त जॾहिं तव्हां मसाज कंदा न त थोरो मामिलो ख़राब थी सघे थो सो मसाज न कंदा कयो मसाज सिर्फ़ फेशियल में कबो आहे ऐं ही तव्हांखे फेशियल वारो रिज़ल्ट ॾींदी पर ही फेशियल न आहे सो ही टू इन वन फार्मूलो आहे फेशियल जा हिन जे अंदरि यानी की फेशियल जूं चीज़ूं एॾे थियल आहिनि पर ही बज़ाहिर नाइट क्रीम आहे

हाँ जी बिल्कुल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिंदाबाद। अच्छा नूर फातिमा, तुम्हारे लाइ कड़ो गानो चयो हो सुनी तारिक हुसैन लोहर भाई मर्शद मौजूद है, बहुत शुक्रिया। नेदड़ी कहती कि हाँ ना लोगों को लिखना नहीं आता, आई थिंक इसीलिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मैंने लिख दी। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अच्छा नूर फातिमा कहती है कि हानी मेरी खाला भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज करती है, खाला भी करती है तो अब आप भी यूज कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। निदरी कहती है सलाम टू साइमा मीर, उसको बोलो कब तक मैसेज करोगी, पोस्ट पर आओ धमाका करते हम। साइमा मीर जो है ना अन्य ताई बटन वालों मोबाइल हिलाई दिया साइमा मीर फेसबुक थी ना ही। महबूब अली मोरो सिटी से मेरे साथ मौजूद है, महबूब भाई वेलकम। जामिन अली शादी तो बींदो आ ही जा, हाँ पर सब सिंगर इंदा है, जामिन भी इंदो हों, सही गाल। अच्छा मंसूर हुसैन अंसारी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी वेलकम इन खुश आमदीद। मोहम्मद जमान भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। अच्छा टॉपिक का जवाब बता देते हैं, तो सवाल जो मैंने आज किया था वो क्या है, जिसका पेट भरा हुआ था फिर भी वो खाती जाती है, तो उसका जवाब जो था वो आग था। और मुझे नहीं याद आ रहा कि सबसे पहले जवाब किसने दिया था, तो बस वो पांजी भर में खुश थी मैंने, तो यस आई एम विनर। हाँ जी बिल्कुल, सभी लगाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और अमानुल्लाह महर भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। निदरी कहती है जारू की दादी है ना उसको बोलते हैं दद्दा, हाँ जी पता नहीं वो ड्रामे में है ना उसको बोलते हैं, और मेरी छोटी भांजी बोलती है दद्दा दद्दा तो बस मैं जब भी वो दद्दा सुनती हूँ तो मुझे मेरी भांजी याद आ जाती है। और इसी के साथ आप लोगों से इजाजत, रसूल बख्श बलोच भाई वालेकुम अस्सलाम, और बस हाँ बस क्यों चुप क्यों, पोस्ट के लाइक शेयर करे छजो। सो वरी तहां सा मिलूं था 5 बजे वाले प्रोग्राम में, सो पांजो ओई रुसरो खया रखना। आई जे जी अन्या ताई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कोन कयो आहे बाबा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो, आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम पांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो। आई मिलूं था 5 बजे, पांजो ओई रुसरो खया रखना, मोकलानी नाही बाबू से सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक।

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: आबादी की नहीं तो मार्च सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब का सपोर्ट उसका हासिल है, पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है. खान का मैंडेट चलता है, खान के डायरेक्शन चलते हैं, किसी और के कहने से कुछ नहीं.
4: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाए ही आए, सुहेल अफरीदी के बानी है, पार्टी की हिमायत हासिल आए. केपीके में नई इमरजेंसी लगती, नई गवर्नर राज लगंदो. इस्लामाबाद में मीडिया से गालाइंदे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो है तो डायरेक्शन रुगो बानी की हलंदी है. लॉन्ग मार्च जो रूट तो इस्लामाबाद जो ही है.
5: ये अब सियासी तौर पर बहुत कमजोर हो गए हैं. किस तरीके से वो अली अमीन गंडापुर के पास गए, जिसको वो आला कार कहते थे, मुख्तलिफ अलकाबाद से नवाजते थे, तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पर सुल्तान अफरीदी के पास ये शक्त है कि वो ये लॉन्ग मार्च कर सके. आई थिंक पॉलिटिकली वो बहुत वीक.
4: पीटीआई वारा सियासी तौर ते घणो कमजोर थी विया आहिनि, लॉन्ग मार्च करे न सघंदा. समावारे वफाकी वज़ीर अतातारण चयो आहे त सुहेल अफरीदी जंहिं तरीक़े सां अली अमन गुंडापुर वटि वियो, सभिनी जे साम्हूं आहे. सुहेल अफरीदी वटि सियासी सघ नाहे रही.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
6: सचल की सरमस्त धरती,
7: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान.
6: GAFM 88 नेटवर्क,
7: सिंध की आवाज़.

0: GA FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अगर खूबसूरती खपे त आर्ट्स अपनायो, आर्ट्स ब्यूटी क्रीम।
2: आप सुन रहे थे GA FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: GA FM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ़्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
0: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315-25-786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़
5: Hi, hi, hi.

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
2: बाबू भाई वरना मुझे सार है, बाबू भाई

0: बाबू।
1: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारी जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
5: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 0331-252-5786।
2: जी हा 2315-2575-786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 to 10:30 ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 खां राति 10 ऐं हर आचर ते सुबुह 10 खां राति 10 ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
7: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
4: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 to 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पार्टियों की ना वो गवर्नर रूल यही रूट है और क्या रूट है अनलेस कि कल अनाउंस हो जाएगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद के लिए तो मार्च सुहेल अफरीदी साहब को खान साहब का सपोर्ट उसका हासिल है पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है खान का मैंडेट चलता है खान के डायरेक्शन चलते हैं किसी और के कहने से कुछ नहीं।
1: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाए ही आए सुहेल अफरीदी के बानी है पार्टी की हिमायत हासिल है केपीके में एमरजेंसी लगंदी नई गवर्नर राज लगंदो इस्लामाबाद में मीडिया से गालंदे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चाहे डायरेक्शन रुगो बानी की हलंदी है लॉन्ग मार्च जो रूट तो इस्लामाबाद जो ही है।
2: मुझे हमें लगता है कि ये अब सियासी तौर पे बहुत कमजोर हो चुके हैं जिस तरीके से वो अली अली गंडापुर के पास गए जिसको वो आलाकार कहते थे मुख्तलिफ हल्का बाद से नवाजते थे तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पे सुहेल खान अफरीदी के पास ये सकत है कि वो ये लॉन्ग मार्च कर सके आई थिंक पोलिटिकली वो बहुत वीक हो
1: पीटीआई वारा सियासी तौर ते घणो कमजोर थी विया आहिनि लॉन्ग मार्च करे न सघंदा सुत समा वारे वफाकी वजीर अतारड़ चयो आहे त सुहेल अफरीदी जंहिं तरीक़े सां अली अमन गंडापुर वटि वियो सभिनी जे साम्हूं आहे पीपल्स पार्टी जे नेहर हुसैन बुखारी चयो आहे त सूबाई हुकूमत जी नाकामीअ ते गवर्नर राज लॻी सघे थो वफ़ा केपीके में गवर्नर राज बाबति मुशावरत कई त आइन मूजिब मशवरो ॾिनो वेंदो केपीके में गवर्नर राज आइन खां मथां न हूंदो। ईरान जी सूरतहाल घणी ख़राब आहे हथियार फिटा कंदा या न ख़बर न आहे जेसि ताईं मां आहियां उत्तर कोरिया ठीक रहंदो वॉशिंगटन में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख्स आहियां जेको किम जोंग उन खे पसंदि कंदो आहियां ऐं हू मुंहिंजो बहितरीन दोस्त आहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका जी बरतरी बरक़रार आहे जेका बरक़रार ई रहंदी निगरानीअ लाइ कमेटी बि जोड़े रहिया आहियूं। ईरानी परदेही वज़ीर अब्बास इराकचीअ जी साल्स मुल्क खतर जे नुमाइंदनि सां मुलाक़ात कतरी सालसनि ईरानी तजवीज़नि ते अमेरिकी जवाब अब्बास इराकची हवाले कयो अब्बास इराकची अमेरिकी जवाब ते ईरानी क़यादत सां मुशावरत कंदो ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल जे सरबराह मोहसिन रज़ाई चयो आहे त ट्रम्प दलदल में फासी पियो आहे ईरानी तजवीज़ू अमेरिका वटि पहुची वयूं आहिनि फ़ैसिलो ट्रम्प खे करणो आहे ईरान कंहिं बि सूरत में हथियार फिटा न कंदो। आलमी मुआहिदनि खे हिकु तरफ़ो ख़तम या मुअतल नथो करे सघिजे तय थियल मुआहिदनि ते अमल करणु बि लाज़िम हूंदो आहे सिंतास मुआहिदे बाबति आलमी सालसे अदालत में पाकिस्तान जे हक़ में फ़ैसिलो ॾेई चुकी आहे सुत समा वारे वफ़ाक़ी वज़ीर अतारड़ चयो आहे त सिंतास मुआहिदे खे ख़तम तोड़े मुअतल नथो करे सघिजे पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे जे तहफ़ुज़ लाइ घुरबल क़दम खणण लाइ तयार आहे पाकिस्तान पंहिंजे पाणीअ जे हिसे ते को बि छा न कंदो सिंतास मुआहिदो पाकिस्तानी जे बका जो मसलो आहे। सूबनि वारी ॻाल्हियुनि ते ध्यानु न ॾियणु घुर्जे न ई परेशान थियणु घुर्जे मोहसिन नक़वी जे सदर आसिफ अली ज़रदारी सां का मुलाक़ात न आहे थी मुलाक़ात वारियूं ॻाल्हियूं ग़लति आहिनि ग़लति ख़बर सबबि बदनामी थिए थी ग़लति ख़बरुनि खे कीअं रोकजे साफ़ी मशोरा ॾियनि कराची प्रेस क्लब में साफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे शर्जीलीना मेमण चयो त नवनि सूबनि बाबति पीपल्स पार्टीअ जी पॉलिसी वाज़े आहे सिंध असेंबलीअ ते फ़ैसिलो अॻी ॾेई चुकी हुई हाणे गोड़ थियो त वरी बि फ़ैसिलो ॿुधाए छडि॒यो आहे पाकिस्तान दहशतगर्दीअ जो शिकार रहियो आहे लॉन्ग मार्च कंहिं मक़सद लाइ कया वेंदा आहिनि पर पीटीआई जो मुतालबो रुगो संदन बानीअ खे आज़ाद कराइण आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस जो केपीके ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन चार दहशतगर्द मारिजी विया हथियार हथ कया विया आहिनि केपीके जे इलाइक़े मीर अली में फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारिजी विया टांक में पटवार खाने खे टारगेट करण जी कोशिश नाकाम पंहिंजे ई बम फाटण सबबि हिकु दहशतगर्द जहनम भेड़ो कयो वियो बलोचिस्तान जे सोराब ज़िले में बि फोर्सिस जी हिंदुस्तानी फितने ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई कई वई हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां केपीके ऐं बलोचिस्तान में दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाईनि ते फोर्सिस खे भेटा पेश कई वई मोहसिन नक़वी चयो त दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदा। सोमालिया में सामूंडी धाड़ेलनि जे कब्ज़े हेठि बहरी जहाज़ खे छॾाइण लाइ सोमाली फ़ौज जो ऑपरेशन जहाज़ ते मौजूदु पाकिस्तानी अमले मां कुझु जे मारजण जा इतलाउ मिलिया आहिनि जहाज़ ते मौजूदु पाकिस्तानी अमले जे वारसनि

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

खुफिया राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट फार्मूला आपकी जल्द को बनाए बी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद

0: अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो,
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-252-5786।
3: जी हा, 2315-25-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: 1984 पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM4।
2: सुनवा राहु सुन पाजो करे जाहिर नहीं दो कर, करे जाहिर नहीं दो कर, लिखण में चेरी लिखण न को तारण में अग्या सही।

0: White Ace Beauty Cream Glowing Essential Raz, a product by Biocon International Pakistan.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

0: पार्टियों की ना वो होगा गवर्नर रूल होगा, यही रूट है और क्या रूट है। अनलेस कि कल अनाउंस हो जाएगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबादी की भी तो मार्च सुहेल अफरीदी साहब को, खान साहब का सपोर्ट उसको हासिल है, पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है। खान का मैंडेट चलता है, खान की डायरेक्शन चलते हैं, किसी और के कहने से कुछ नहीं।
1: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाई आहे, सुहेल अफरीदी के बानी पार्टी की हिमायत हासिल है कि खैबर पख्तूनख्वा में नई इमरजेंसी लगंदी और नई गवर्नर आज लगंदो। इस्लामाबाद में मीडिया से गलाइंदे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर है डायरेक्शन रुगो बानी जी हलंदी है, लॉन्ग मार्च जो रूट तो इस्लामाबाद जो ही है। केपी में सूबाई हुकूमत की नाकामी से गवर्नर राज लगी सके तो, वफाक केपी में गवर्नर राज बाबत मुशावरत कई तो आइन मूजिब मशवरो दिनो वो। केपी में गवर्नर राज आइन का मथाहों न हों, पीपल्स पार्टी के मरकजी अगवान नैयर हुसैन बुखारी है मनमान की सुझाव है पीटीआई के सहमत सा न पर अदलिया में मिल्द। पीटीआई जो रवैयो सुठो ना रो, एहतजाज के नारे शहर से हमलो कर कबूल जुगो ना। ईरान की सूरतहाल घनी खराब है, हथियार पिटा कंदा या न खबर ना जस तई मां आया। उत्तर कोरिया जो सरबराह किम जोंग उन ठीक रहंदो, वाशिंगटन में मीडिया सा गालींदे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है त समूरी दुनिया में मां वाहिद शख्स आया जो किम जोंग उन पसंद कंदो आया हूं मुझो बेहतरीन दोस्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमरीका की बरतरी बरकरार है, जेका बरकरारी रहंदी निगरानी लाए कमेटी भी जोड़े रहा है। ईरानी परदेही वजीर अब्बास अराग़ची तजवीज़न पे अमरीकी जवाब मिलने की तस्दीक कर छी। ईरानी परदेही वजारत के तर्जुमान फातिमा महाजरानी है अब्बास अराग़ची अमरीकी जवाब का काबीना के आगाह किया है, अमरीकी तजवीज़ खत्े में जारी जंग के खात्मे के हवाले से है। आर्मी माहिदन के एक तरफो खत्म या मुअत्तल नथो करे सके, तय थियल माहिदन पे अमल करण भी लाजिम हों है। सिंध तास माहिदे बाबत आलमी सालिसी अदालत भी पाकिस्तान के हक में फैसलो दई चुकी है। सुध समा वाले पाकी वजीर तौला तार सिंध तास माहिदे के खत्म तोड़ी मुअत्तल नथो करे सके, पाकिस्तान सिंध तास माहिदे के तहफुज लाए घुर्बल कदम करण लाए तैयार है। पाकिस्तान पैंजे पानी के हिस्से ते को भी ठा न कंदो, सिंध तास माहिदो पाकिस्तानियों की बका जो मसलो है। सूबनवारी गालियन ते ध्यान न दियण घुर्जे, नई परेशान थियण घुर्जे। मोहसिन नकवी की सदर आसिफ की सरदारी से का मुलाकात ना थी, मुलाकात वारियों गालियों मफरूज आन, गलत खबर सबब बदनामी थे थी, गलत खबरन के किया रोकजे, साफी मशवरा दियन। रांची प्रेस क्लब में साफियन से गालाइंदे शजीला मेमन चो नवन सूबन बाबत पीपल्स पार्टी की पॉलिसी वाजे है, सिंध असेंबली भी फैसलो अग दई चुकी हुई, हाँ गोड़ थो तो वरी भी फैसलो बुधाए छो है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की शिकार रो है, लॉन्ग मार्च के मकसद लाए क्या वा पर पीटीआई जो मुतालबो रुगो सदन बानी के आजाद करण है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्द खिलाफ ऑपरेशन, चार दहशतगर्द मारी वा हथियार हथ। केपी के इलाके मीरअली में फोर्सेस के ऑपरेशन दौरान टे दहशतगर्द मारी वा, टांक में पटवार खानी के टारगेट करण की भी कोशिश नाकाम, पैंजो ही बम फाटन सबब एक दहशतगर्द जनम भीड़ो थी वो। बलोचिस्तान के सोराब जिले में पी फोर्सेस की हिन्दुस्तानी फितने खिलाफ कामयाब कार्रवाई, एक दहशतगर्द मारी वो। गरु अजीब मोहसिन नकवी पारा केपी और बलोचिस्तान में दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई से फोर्सेस के भेटा पेश, मोहसिन नकवी चयो तो दहशतगर्दन के खात्मे ताई ऑपरेशन जारी रहंदा।
2: मेरे भाई का सैयद काशी उमर सैकिन अफसर थे, उनको कल कजाकों ने मार दिया, उनकी लाश भी यहाँ मददगार वहाँ पे पड़ी हुई है। मैं सबसे गुजारिश करती हूँ जल्द से जल्द मेरे भाई हम तक

0: Tentang kira nunggu Nggari mi merampok pacate.
1: Wasiya hukuman sehat gue tuh betul baik ke kisi kalau sama ibu itu tuh aku habis lagi lo habis gue gua habis nih tentu waktunya aku terus kita sering terbawa sendiri.
2: Kebe, hamar bete gua jinna tuh lani sendiri gua hamil rasna ada balik ya ham tuh usus rasna ada balik ya tuh taja gua nas.
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
5: औलाद जो नथियन औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदिया है आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदिया है.
7: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिया मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी.
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां रात 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां रात 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, TB, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ कुमार, मोबाइल नंबर 0308631633।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻराइण लाइ। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो? सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहा आयो?
3: तो पोए जी

0: FM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 0331252576
0: जी हा 2315525786
1: GFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं, बहितरीन रिज़ल्ट हासिल कर। क्रीम सां गॾु सोप सां मिले चमार, ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: मां आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरती। अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो

0: मुतल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331-2525-786।
2: जी हा, 3135-2525-786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतों ने बारडन जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली आस पास की आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अप्रारक बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
7: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: खुशखबरी, खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलराज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 बजे खां राति 10 बजे ऐं हर आचर ते सुबुह

0: सो चौताली
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
4: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252576।
4: जी हा 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: FM GAFM 88 Network सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347।

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचैनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली।

0: वारी मोबाइल नंबर 0370-94-294।
1: मातली आसपास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताई। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजन, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: इतिहाल ऐं गवर्नर राज समेत इमरजेंसी वारे मामले ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी सदर आसिफ ज़रदारी सां बि मुलाक़ात करण जो इम्कान. मुल्की सियासी सूरतहाल ख़ासि तौर ते ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में अमन अमान वारी सूरतहाल ते ग़ौर वीचार कयो वेंदो.

0: सीओ की ना वो गवर्नर रूल, यही रूट है और क्या रूट है, अनलेस कि कल अनाउंस हो जाएगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबादी के लिए तो मार्च, सोहेल अफरीदी साहब को, खान साहब का सपोर्ट उसको हासिल है, पूरी पार्टी का यूनानिमस सपोर्ट उसको हासिल है, खान का मैंडेट चलता है, खान के डायरेक्शन चलते हैं, किसी और के कहने से कुछ नहीं।
1: लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाई आहे सोहेल अफरीदी के बानी ए पार्टी की हिमायत हासिल है, केपीए में न इमरजेंसी लगंदी ए नई वरी गवर्नर राज लगंदो। इस्लामाबाद में मीडिया से गालाइंदे पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो तो डायरेक्शन रुगो बानी जी हलंदी आहे, लॉन्ग मार्च जो रूट त इस्लामाबाद जो ही आहे।
2: केपी में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और सूबाई हुकूमत की उसे कंट्रोल करने में अदम दिलचस्पी और नाकामी वो वजह है जिसकी वजह से आर्टिकल 232 के तहत इमरजेंसी के लिफाज की बात हो रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें यकीन ताउन करेगी।
3: मुझे लगता है कि ये अब सियासी तौर पर बहुत कमजोर है, जिस तरीके से वो अली अली गंडापुर के पास गए जिसको वो आलाकार कहते थे, मुख्तलिफ हल्काबाद से नवाजते थे, तो मैं नहीं समझता कि वो अब सियासी तौर पर सोहेल खान अफरीदी के पास ये सकत है कि वो ये लॉन्ग मार्च कर सके। आई थिंक पॉलिटिकली वो बहुत वीक हुई।
1: पीटीआई वारा सियासी तौर से घणो कमजोर थी वया आहिनि, लॉन्ग मार्च करे न सघंदा। सुदसमा वफाकी वजीर अता ताड़ चयो आहे त सोहेल अफरीदी जंहिं तरीके सां अली अमीन गंडापुर वट वियो सभिनी जे साम्हूं आहे। पीपुल्स पार्टी जे नैर बुखारी चयो त सूबाई हुकूमत जी नाकामीअ ते गवर्नर राज लॻी सघे थो। वफाक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज बाबति मुशावरत कई त आइन मूजिब मशवरो ॾिनो वेंदो। केपीए में गवर्नर राज आइन खां
4: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जी हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं बियन बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आस पास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते

0: हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 03036638879 ऐं 03124001287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
1: जी हा, 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

तोखे सारे नेण वसी पिया, आधी आधारे नेण वसी पिया। तोखे सारे नेण वसी पिया, आधी आधारे नेण वसी पिया। तुझू यादू तारा जणके, उभदे निहारे नेण वसी पिया। तो बिन पीली पीली सावक, हर वसकारे नेण वसी पिया। तोखे सारे नेण वसी पिया, आधी आधारे नेण वसी पिया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम। GFM 90.4 मातली जो लाइव स्टूडियो प्रोग्राम रस रिहान सान करे आवे आवा जो पहिंजो आरजे गुलाम कादर गिरानो जी सामन केड़ा हाल आई नवा जो उम्मीद तकरी तवा ठीक ठाक चा कई चंगा भला हुंदा। असन जो दिली दुआओं इन एक तमन्नाओं ता रब ताला तवा के पेंजे हिफ्ज अमान ई बाज में रखे, हमेशा गुलन जियां टणंदा ई महकंदा रहो। प्रोग्राम रस रिहान जो आगाज थी चुको है, पेंजो ही साथ जुड़ी चुको है, जेको जारी सारे रहंदो हाने का वठी ठीक रात 9 बजे ताई। इन सफर में कंदा खोड़ सारी कचेरी शामिल कंदा सी मिक्स मौसीकी जरंग अंग्रेजी गडी शामिल हुंदा वहां जा सनिया वहां जा पैगाम वहां जा SMS जेके वहां डेरे उमणींदा 888-1 ते जिया 88-81 ते मातली मातली खां ॿाहिरि जिते जिते असांजो मुसाफ़िर आवाज़ ऐं आधार वञे ॻोठ वञे शहर वञे वहाण वञे वसंदियुनि में पहुची रहियो आहे। उन्हनि सभिनी समातुनि खे वेलकम ऐं भलीकार चवंदासीं, ख़ुश आमदीद जी आहिनि पखेरागले वैश मले। अॼु जी तारीख़ खे ॿुधंदा आहियूं त 30 सेप्टेम्बर 2026 अरबा जो ॾिहाड़ो ऐं अरबा जे ॾिहाड़े जा शाम जा हसीन लम्हा अवां सां गॾु हूंदासीं। उम्मीद करी तव्हांजो साथ बस सां जुड़ियो रहंदो, बरकरार रहंदो, सलाड़ियो रहंदो ठीक हिननि ॿिनि कलाकनि ताईं। हिननि ॿिनि कलाकनि खे यादगार बणाईंदासीं गॾो गॾु अवां जा सनी अवां जा SMS ऐं मिक्स मौसीकी जा रंग जेके बिल्कुल अवां जी दिलि वटां हूंदा। वक़्त जो अहसास शाम जा 7:12 थी चुका आहिनि ऐं प्रोग्राम रस रिहण जो बाक़ाइदा आगाज़ कंदासीं रागे जी राणी साइण आबदा परवीन जे नसूणे ऐं मन मोहिणी आवाज़ सां। उमेद करियूं त हीउ सॉन्ग अव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो।

वेलकम बैक एक दफा मेरे भले कार रही खुश आमदीद चवंदस तव्हांखे पंहिंजो प्रोग्राम रस रिहाण ऐं रस रिहाण पेश कयो पंहिंजे GFM 90.4 मातली जे लाइव स्टूडियो मां ऐं हिन सफ़र में आऊं आहियां मुंहिंजे सफ़र जो साथी यार जे ग़ुलाम कादर गिराणो वक़्त जो अहसासु शाम जा 7:18 थी चुका आहे अवांजा सनी अवांजा पैगाम उन्हनि जे एस एम एस हाणे खां ई अचणु शुरू थी चुका आहिनि तव्हां सभिनी साथियुनि जी मोहबतूं आहिनि अनमोल मोहबतूं जेके हूंदियूं आहिनि अवां दोस्तनि जी हूंदियूं आहिनि ऐं उस्ताद बुख़ारी जूं सिटूं जेके मुंहिंजे ज़हन ते तरी आयूं आहिनि दिलि चाहे पई तव्हां ताईं पहुचाइजनि न हेॾे ॾिठोसीं न होॾे ॾिठोसीं न हेॾे ॾिठोसीं न होॾे ॾिठोसीं अखियूं ॿूटे उल्फत जो पीछो कयोसीं वॾी दिलि करे दिलि जो सौदो कयोसीं न की दिलि हयईंसीं न को मन हयोसीं इशारनि इशारनि में कंहिं थे लुटियो कोई कुछियोसीं न कोई पुछियोसीं खिलायो बि दिलि पर रुवाड़ियो बि मरण जी घड़ी त पंहिंजो आऊं कयोसीं जेकॾहिं तव्हां बि शामिल थियणु चाहियो था त बिल्कुलु शामिल थी सघो था शामिल थियण जो तरीक़ो आसान सभ खां पहिरियां करणो इहो आहे तव्हांखे पंहिंजो मोबाइल खणणो आहे मोबाइल या राइट या क्रिएट SMS में वेंदा जिते सभ खां पहिरियां MTI लिखिजो हुन खां पोइ थोरो स्पेस ॾिजो पंहिंजो नालो पंहिंजो ॻोठु पंहिंजो शहर पंहिंजो वाहण पंहिंजे वसंती जो नालो ज़रूरु लिखिजो जिते तव्हां रहंदा आहियो प्रोग्राम जे हवाले सां बिल्कुलु हिकिड़ो सुवाल बि मुंहिंजे लाइ खणी आयो आहियां पर हिन सॉन्ग खां पोइ ऐं अवां ताईं सुवाल पहुचाईंदुसि ऐं हुन SMS खे माणींदा 888-1 ते जीअं 88-81 ते ऐं 88-81 ते अवांजा सनिया अवांजा पैगाम अवांजा मींहं जा नियापा काफ़ी तइदाद में पहुची चुका आहिनि जिन खे असां वक़्तनि ब वक़्तनि ज़रूरु शामिल रखंदासीं शहज़ाद अली गिराणो साहिबु अवां असांखे यादि कयो आहे पंहिंजी मौजूदगी जो अहसासु ॾियारायो आहे ऐं थोराइतो आहियां अवांजी मोहबतुनि जो अहमद मुग़ल जो आवाज़ प्ले कयो आहे अहमद मुग़ल हमेशह दोस्त चवंदा आहिनि ऐं जीजल अमर जो ज़िक्र आहे ऐं जेके जेके हिन वक़्तु जीजल अमरूं मूंखे ॿुधनि पियूं हीउ सॉन्ग स्पेशली उन्हनि जे लाइ

टेक ऑफ टू टेक मन जलब लिखे हो एकड़ो जबरदस्त सॉन्ग है अंबर महक जो आवाज है अवन जा सनी अवन जा पैगाम काफी तादाद में सवाल यो है तमा सके बुदा सको तो इंसान एकड़े मिनट में कितरा भेरा साह खणे थो या इंसान एकड़े मिनट में कितरा भेरा साह खणे थो यो आज जो सवाल सवाल एसएमएस में देई सको ता उन जो जवाब सॉन्ग के इंजॉय कंदासी गडो गड कमर्शियल ब्रेक जो वक्त हों हाँ पैं मुलाकात सॉन्ग का कमर्शियल ब्रेक रहो असा गड गुद रहो जी एफ एम 90.4 मातली जो आवाज सिंध जो आवाज।

0: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H ब्यूटी क्रीम

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारन, औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3494-244।

0: वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर कंदा।
2: 03132525786।
1: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़न जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि, औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ़ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 बजे खां राति 10 बजे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 बजे खां राति 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, बेचे कमज़ोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 03704-3495-244।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

वेलकम बैक की तो बेड़ भलकार रही खुशी आमदीद चवंदस तवा के पंज प्रोग्राम रस रिहाण पेश के पंज जी एफ एम 90.4 मातली जे लाइव स्टूडियो में इन सफर में आऊं आवां जे सफर जो साथी आर जे गुलाम कादर गिराणू वक्त जो एहसास रात जा 7:51 थी चुका आहिनि अवां जा सनी अवां जा पैगाम अवां जा एसएमएस सवाल इहो आहे तव्हां असांखे ॿुधाए सघो त इंसान मिंट में केतिरा भेरा साह खणे थो जी हा इंसान मिंट में केतिरा भेरा साह खणे थो अवां असांखे हिन जो जवाब ॾेई सघो था जवाब ॾियण जे लाइ बिल्कुलु अवां एसएमएस कंदा एसएमएस करण जो तरीक़ो असां सभ खां पहिरियों करणो आहे जो पंहिंजो मोबाइल खणो मोबाइल राइट या क्रिएट एसएमएस में वेंदा जिते सभ खां पहिरियों एमटीआई लिखिजो हुन खां पोइ थोरो स्पेस ॾिजो पंहिंजो नालो पंहिंजो ॻोठु पंहिंजो शहर पंहिंजो वहण पंहिंजे वसन जो नालो ज़रूरु लिखिजो ऐं एसएमएस खे माणींदा 8881 ते 8881 ते अब्दुल हुसैन घिराणो असांखे यादि कयो आहे महिरबानी आहिनि अवां सां गॾु राशिद अली सोलंकी नवीद अली घिराणो बि आहे महिरबानी आहिनि अवां जूं

अली हसन गिरणो साहब असा याद किया गिरणो एहसान अली गिरणो अब्दुल हुसैन गिरणो मेहरबानी आए नवा के भली कार चवंदा सी खुशा मदीद चवंदा सी मेहरबानी आए नवा जो पंज मौजूदगी जो एहसास से डारे आ चो पे तसा नो पको सब दे सजी संगत सा गड़ वेई कनायो पया तो मेहरबानी आए नवा सबनी जो मोहब्बतो आइन लखतो रावण जा गोट फतेह मोहम्मद राजड़ खां असा याद किया ओभायो खान राजड़ अवे भली कार चवंदा सी प्रोग्राम बेहतरीन कयो पया जवाब 12 खां 20 भेरा सा खणे तो इंसान अवां जवाब दिनो आ मेहरबानी आए नई फौजिया के बुधन चाहियो आ सलाम टू ऑल वालेकुम अस्सलाम मेहरबानी आए नवा जो मुश्ताक अली लाशारी बाबू लाशारी जामोट फार्म रिचल खां असा याद किया भली कार चवंदा सी खुश आमद ईद चवंदा सी असो टेक्निकल साथी शाहनवाज खासकेली साहब असंगे कनाए पे मेहरबानी आए नवा जो अवा के बस भली कार चवंदा सी खुश आमदीद चवंदा सी किंग सऊद टू साहब अवा के भली कार चवंदा सी एंड गुलाम मुस्तफा टू एंड चंदर मकवाणू अवा के बस भली कार चवंदा सी मेहरबानी आए नवा पेंजी मौजूदगी जो एहसास डारायो अवा सा गड अचा सलाम चया आइन शाहनवाज खासकेली GFM जे टेक्निकल साथी जे लाए वालेकुम अस्सलाम मेहरबानी आइन अवा के बस भली कार चवंदा सी खुश आमदीद चवंदा सी ए प्रोग्राम के पसंद कयो आ गोठाजी मोहम्मद रहीम लाशारी खां असा याद कयो आ हाजी अब्दुल्ला लाशारी साहब एंड करीम बख्श लाशारी साहब मेहरबानी आए नवा चयो तो सर मेहरबानी मोहब्बतूं अवां सलाम चयान सभिनी जे लाइ त वालेकुम असलाम किंग नदीम खासकेली एंड गुलाम हुसैन खासकेली सिंध पुलिस ऐं अवां सां गॾु नंढड़ो मुज़म्मल हुसैन खासकेली अवां सां यादि कयो आहे ॻोठ अवां जो आहे मोहम्मद अज़ीम खासकेली फौजा सुमरो प्ले थी चुकी आहे ॻोठ हाजी वाहिद ॾिनो गिराणू खां गुल मोहम्मद गिराणू बिलावल गिराणू नबील अहमद गिराणू हाजी पीरू गिराणू

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
2: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
1: आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते बारन औरतन ऐं मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार नज़लो जुकाम बदन में सूर चेनी कमजोरी मलेरिया मुद्दे जो बुखार टीबी बदहजमी मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
9: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाए सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
5: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट ऐं लॻाइण लाइ 0300-2962-435 टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो? भले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331-252-5786।
6: जी हा 2311-2525-786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

पेज के रिफ्रेश कयो आहे जीअं मुंहिंजा एसएमएस पहुचनि था, तीअं मुंहिंजा एसएमएस सां ज़रूरु शामिल रखंदासीं। सवाल इहो आहे तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था त इंसान मिंट में केतिरा भेरा साह खणे थो? जंहिंजा काफ़ी दोस्तनि असांखे जवाब ॾियारे उमाणिया आहिनि। यकीन जेका राति आहे हाणे आहे थधिड़ी थधिड़ी थींदी पई वञे, मातली जी जेका राति हूंदी आहे ॾाढी बहितरीन हूंदी आहे। शाम खां पोइ जॾहिं राति थींदी आहे त हर को चाहींदो आहे त आउं जल्द खां जल्द पंहिंजे मंज़िल मक़सूद ते पहुचा, पंहिंजे घर पहुचा। सो बराए महिरबानी जेकॾहिं तव्हां सफ़र दौरान असांखे ॿुधो पिया पंहिंजी पंहिंजी गाॾियुनि में, तव्हांखे चवंदासीं त ड्राइविंग केयरफुली। ऐं जेके दोस्त जल्दबाज़ी कंदा आहिनि ऐं जेके रोड ते मुख़्तलिफ़ दोस्त सफ़र कंदा आहिनि मोटरसाइकिल ते, ऐं काफ़ी जेके दोस्त आहिनि उहे पैदल बि सफ़र कंदा आहिनि, असांखे उन्हनि सभिनी जो एहतियात करणु घुरिजे। ऐं जेके गाॾियुनि में सर्च लाइटूं लॻल आहिनि ऐं साम्हूं वारे खे सर्च लाइट ॾियनि था, त सच पुछो उहे ॾाढो साम्हूं वारे दोस्त खे ऐं साम्हूं वारे ड्राइवर खे मुतासिर कंदियूं आहिनि, त इन जो बि ख़्यालु करणु घुरिजे। छोजो हुन गाॾियुनि में वेठल जेके मुसाफ़िर आहिनि उन्हनि जूं जानियूं इलाही क़ीमती आहिनि। असां पंहिंजी लापरवाही पंहिंजी अना में अची पोइ उन्हनि खे डिम फुल पिया ॾींदा आहियूं। सो बराए महिरबानी असां सभिनी खे एहतियात करणु घुरिजे। उनजा सनिया उनजा पैगाम काफ़ी तइदाद में। ॻोठ अली तुर्क एट ख़लीफ़ो क़ासिम आसिफ़ अली हिंगोर जो अवां असांखे यादि कयो आहे। अशफाक अहमद एंड नंढड़ी अंबर फातिमा हिंगोर जो अवां असांखे यादि कयो आहे। सलाम चयन आल टीम खे वालेकुम असलाम। महिरबानी ॻोठ मोहम्मद यूसुफ एंड नोतकाणी खां अवां सलाम सिंध वालेकुम असलाम। विशान मुदसर एंड मोहम्मद कुमेल एंड नोतकाणी ज़ुल्फ़कार आज़ाद सॉन्ग अवां ॿुधणु चाहियो आहे। मास्टर मंज़ूर नाज़न कर चुमन थींदा अथई। महिरबानी आहिनि अवां जो, अवांखे असां भलीकार चवंदासीं। ॻोठ मोहम्मद याकूब लाशारी खां बाबू लाशारी एंड रईस मुश्ताक अहमद लाशारी फ्राम ॼमोट फारम रिचल खां असांखे यादि कयो आहे। अवांखे बि असां भलीकार चवंदासीं।

अस्सलाम वालेकुम अदा वालेकुम हाजी अहमद सुमरो टंडे गुलाम हैदर का असंग याद के अब्दुल अजीज सुमरो मोहजम अली सुमरो फौजिया जो लजो आ चो त बेहतरीन सॉन्ग आ प्ले कयो तो मेहरबानी आ न फौजिया के पसंद कयो आ।

ठिकाना त पोइ ॻोठ हाजी हमज़ा लगारी खां दोस्त मोहम्मद लगारी गुलाम कादर लगारी साहब अवां असांखे यादि कयो महिरबानी आहे नवां जूं ऐं ॻोठ हाजी वाहिद ॾिनो गिराणू खां गुल मोहम्मद गिराणू बिलावल गिराणू मोहम्मद रहीम गिराणू ऐं हाजी पीरू गिराणू महिरबानी आहे नवां जूं हीउ सॉन्ग स्पेशली उन्हनि दोस्तनि लाइ जिन दोस्तनि खे मोहम्मद उर्स चांडे जो आवाज़ पसंदि आहे ऐं अवां सलाम चया आहिनि उस्ताद साजन मीर जत जला त वालेकुम असलम।

जूं मौजूं ग्रुप जा साथी जेके दोस्त असांखे ॿुधनि पिया, ग्रुप जो चेयरमैन लाला खान, समूह अदी, नाज़िया माजिद, गुलाम मुस्तफ़ा भुट्टो एंड अली अकबर ॾिठो साहब, ऐं जेके जेके दोस्त अवां सां गॾु हिन वक़्तु ॿुधनि पिया, उन्हनि सभिनी जूं मुहबतूं अवां चयो आहे त असां सभिनी जो हिकिड़ो ई अज़म आहे, हिकिड़ी सोच आहे, महिराण मौज आहे। महिरबानी आहे नवां सां ईद चवंदासीं। महिराण जूं मौजूं ग्रुप जा दोस्त साथी, महिरबानी, भलीकार।

पोचा दो पार खां संग याद कयो आहे किने राज एंड प्रदीप अनंत कुमार एंड महिताब अवांखे भलीकार चवंदासीं, ख़ुश आमदीद चवंदासीं, भलीकार महिरबानी आहे न वञो, प्रोग्राम खे पसंदि कयो आहे। मुमल अवां संग याद कयो आहे मातली खां, अवां सलाम चया आहिनि, वालेकुम अस्सलाम। गुलाम हुसैन ख़ासि कयली सिंध पुलिस, अवांखे बि असां भलीकार चवंदासीं, ख़ुश आमदीद चवंदासीं। जिन जिन दोस्तनि हाणे टूनन कयो आहे जी एफ एम खे, तव्हांखे सभिनी खे भलीकार चवंदासीं।

खोसो साहब भलीकार चवंदा सी अवां खे नऊ पको स्टाफ का असा याद किया आसिफ कुंभर रानीपुर गंबट एंड उस्ताद दादा खालिद कमरानी टनो आलम मरी फिदा हुसैन चाचड़ कंदकोट नवीद चौहान लाड़काना उस्ताद वीरम शर सांगड़ मेहरबानी अवां सबनी के भली का।

वेलकम बेक एकदम बेरफलिकार ऐं खुशामदीद चवंदासीं ऐं डायरेक्टली सवाल जे तरफ हलंदासीं। तव्हां असांखे ॿुधाए सघां, पुछियो आहे काफ़ी दोस्तनि जा, असां ताईं जवाब पहुता आहिनि। सवाल इहो आहे त इंसान हिकु मिंट में केतिरा भेरा साह खणे थो? 88-81 ते अवांजा सनी, अवांजा पैगाम ॻोठ। अच्छा, देव फतेहपुर खां असांखे यादि कयो आहे, आसिफ अली हालो, हकम अली हालो, बख्शण हालो, यासिर अली हालो, फरमाइश जलाल चंदो प्रोग्राम नाइस आहे। ज़रूर ज़रूर प्ले कंदासीं, असां वटि जलाल चंदो क्यू थियल आहे। महिरबानी आहे नवां सभिनी साथियुनि जूं। हैदराबाद खां असांखे यादि कयो आहे शोनी, अव्हांखे भलीकार चवंदासीं, खुशामदीद चवंदासीं। मोहम्मद खान खां परदेसी बशीर, नोतकाणी आज़ान अली, नोतकाणी अमरोज मडो, महिरबानी आहे नवां जूं। मुख़लिस मोहम्मद हाशिम सुमरो साहब, अव्हां असांखे यादि कयो आहे टंडे मोहम्मद खान खां, महिरबानी आहे नवां जूं। ऐं बिरशा जी नगरी खां बिस्मिल मोहम्मद रफ़ीक सुमरो साहब, अव्हां असांखे यादि कयो आहे, महिरबानी आहे नवां जूं। गोर दरगाह पीर मदार शाह खां अलादीन उर्फ पोड़ोमला एंड सुमार अली मल्हा, अली बख्श वफ़ा, अली बख्श चांडियो, असांखे सलाम चए। वालेकुम असलाम। शहज़ाद अली गिराणो, शावेद अली गिराणो, शीज़ान अली गिराणो एंड शाहज़ैन अली गिराणो, अवां बि असांखे सलाम चए। वालेकुम असलाम। ऐं जुडे खां असांखे यादि कयो आहे ख़ुशी मोहम्मद ऐं कपरी साहब, महिरबानी अवां जूं। ॻोठ जाम खान लगारी खां अली रज़ा लगारी साहब, अवां असांखे यादि कयो, महिरबानी अवां जूं। सॉन्ग प्ले कयो आहे, तमामु बहितरीन सॉन्ग आहे, काफ़ी दोस्तनि जी फरमाइशूं आहिनि त मुमताज़ मोलाई, मुमताज़ मोलाई चई रहियो आहे, अची गॾु वेह मुंहिंजी गाॾीअ में। यकीननि जेको गाॾी जो ज़िक्र थिए थो, असांखे वरी पेट्रोल यादि अचे थो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुन बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: याद रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे दिन मरीजन जो मुफ्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
5: खुशखबरी खुशखबरी अवाजे पंहजे शहर मातली में अलराजी हेल्थ केयर क्लिनिक दंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे। जिते बारन औरतन ऐ मर्दन जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐ MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोजानो शाम 4 वगे खां रात 10 वगे ऐ हर आचर ते सुबुह 10 वगे खां रात 10 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदो आहे। याद रखंदा दायमी बुखार, नज़लो जुकाम, बदन में सूर, बेचे कमजोरी, मलेरिया, मुद्दे जो बुखार, टीबी, बदहजमी, मल्लो बियन बीमारियों जो इलाज कंदो आहे।
6: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधिक राबते लाए सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली आसपास जी अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वगे शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा।

0: अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125257 86।
0: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

एक दफो बीहर भली कार रही खुश आमदीद चवंदासीं सभिनी खे जेकॾहिं तव्हां हाणे हाणे ट्यून कयो आहे जी एफ एम खे तव्हांखे भली कार चवंदासीं ख़ुश आमदीद चवंदासीं 88 81 तव्हांजा सनी अवांजा पैगाम काफ़ी तइदाद में ॻोठ सवाली डंगड़ू खां शौकत अली ग़ुलाम कदर अस्सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम सलाम चया आहिनि सभिनी ॿुधंदड़नि जे लाइ त वालेकुम अस्सलाम ऐं दीवार शहर खे मां ॿुधणु चाहियो आहे कोशिश कंदुसि त दीवा शहर खे बि प्ले करियां अवां जे लाइ अव्हां खे भली कार चवंदासीं ॻोठ सवाली डंगड़ू जा शौकत अली साहब जाति खां अब्दुल शकूर वंगाई मोहम्मद उमर मल्हा साहब अव्हां खे बि असां भली कार चवंदासीं महिरबानी आहिनि अव्हां जूं ॻोठ पो जादो पार खां कन्हेर राज एंड प्रदीप अनंद कुमार एंड मेहताब अव्हां खे भली कार चवंदासीं महिरबानी आहिनि अव्हां जूं ॻोठ सोराब निज़ामाणी खां मोबती मंगण निज़ामाणी एंड नंढड़ो एहसान मंगण निज़ामाणी अदा उर्दू सॉन्ग शामिल कंदा त महिरबानी थी वेंदी महिरबानी आहिनि ज़रूर प्ले कंदासीं अव्हांजे लाइ मोहम्मद सलीम वाढो सोहेल शोभान एंड आज़ान अली वाढो ॻोठ वांझो आहे इस्माइल वाढो रुआम ज़बरदस्त आहे महिरबानी आहिनि अव्हांजूं लख थोरा अव्हांजा वाढा ब्रादर मोया रोड ॻोठ पीरल खान जमाली खां इमदाद अली जमाली सर कहिड़ा हाल आहिनि ऐं ठीकु ठाक आहियां कसम सां अव्हांजो आवाज़ ॿुधी दिलि ख़ुशि थी वई महिरबानी आहिनि अव्हांजूं अव्हां लिखियो आहे सदके सदके महिरबानी आहिनि इमदाद जमाली अव्हांजूं लाला खान समूह साहब अव्हां असांखे यादि कयो आहे मेहराण जी मौज ग्रुप खां महिरबानी अव्हां सलाम अचे आहिनि वालेकुम असलाम काफ़ी दोस्तनि जा एस एम एस जेके मोहबतूं असां ताईं पहुचनि पियूं पेज खे रिफ्रेश कयो आहे जीअं जीअं अव्हांजा एस एम एस अचनि था असां ताईं मुस्कान अवां नामालूम माग खां असांखे यादि कयो आहे महिरबानी आहिनि अव्हांजूं ॻोठाजी ग़ुलाम ख़ासखेली खां असांखे यादि कयो आहे झंडो मरी खां क़ुर्बान अली ख़ासखेली साहब महिरबानी आहिनि अव्हांजूं तव्हांखे बि असां भली कार चवंदासीं ॻोठ अच्छा सुभानी लगारी फ्रॉम टनो मोहम्मद खान अव्हांखे सुभानी लगारी साहब अव्हांखे भली कार चवंदासीं अस्सलाम वालेकुम अदा ग़ुलाम कदर वालेकुम अस्सलाम वंस अगेन सुभानी लगारी अव्हांजो एस एम एस पहुतो आहे असां ताईं चूहड़ जमाली खान नाज़ नगर खान जमाली मोहम्मद हाशिम जमाली मोहम्मद मेहराब जमाली ग़ुलाम कदर जमाली प्रोग्राम लाजवाब आहे महिरबानी आहिनि अव्हांजूं पाबूवर अच्छा ॻोठ पाबू वीरो थर खां असांखे यादि कयो आहे दिलीप कुमार मेघवाड़ नोवल मेघवाड़ दानिश कुमार मेघवाड़ एंड सूरज गुल मेघवाड़ शंकर तव्हांखे बि असां भली कार चवंदासीं महिरबानी आहिनि अव्हांजूं ग़ुलाम हुसैन ख़ासखेली फिदा हुसैन ख़ासखेली बरकत अली ख़ासखेली एंड शहबाज जान ख़ासखेली साहब अव्हांखे बि असां भली कार चवंदासीं ख़ुशि आमद ईद चवंदासीं महिरबानी आहिनि अव्हांजूं अव्हां पंहिंजी मौजूदगी जो अहसासु ॾियारायो ॻोठ मोहम्मद अज़ीम ख़ासखेली खां साॻी माग खां असांखे यादि कयो आहे

अमीन वाडो साईं डिनू खास केली होटल वारो मेहरबानी आहे नवां जूं परदेसी पप्पू मशाख असां खे यादि कयो आहे मेहरबानी आहे नवां जूं अलाए त किथे घुमायो असांजा टेक्निकल साथी शाहनवाज़ खास खेली रब नवाज़ खास खेली अवां जूं बि अनमोल मोहबतूं आहिनि अब्दुल रज़ाक दर्स साहिब अवां बि असांखे पंहिंजी मौजूदगी जो एहसास ॾियारायो वॾा वॾा अवां जा लख थोरा अवां जा

ॿीहर भलीकार ऐं ख़ुशि आमदीद चवंदासीं। वक़्तु घटि मुक़ाबिलो सख़्त वक़्त जो अहसास, राति जा 8:50 थी चुका आहिनि। अव्हां जा सनी अवंज पैगाम काफ़ी तइदाद में शमन अली मीराली जो आवाज़ अव्हां जे लाइ बि लिखियो आहे।

सॉन्ग खे बैकग्राउंड में रखंदासीं, कॾहिं कॾहिं अवांजा सनी अवांजा पैगाम अवांजा नाला शामिल रखंदासीं। ऐं सवाल इहो त अवां असांखे ॿुधाए सघो था त इंसान मिंट में केतिरा भेरा साह खणे थो, जंहिंजो सही जवाबु आहे 16 दफ़ा। मिंट में 16 दफ़ा ऐं कलाक में 960 ऐं 24 कलाकनि में 2340 दफ़ा साह खणंदो आहे इंसान।

समय वक्त उन जगह उन मुड़द पहुतो आ जिते उन चाहींदे अवां खां वठंदस इजाज़त अगर हयाती जो हार सलामत रहियो ऐं साहज सगे साथ ॾिनो त इनशाला पंहिंजी मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते सेम टाइम सेम चैनल ते तेसि ताईं पंहिंजो ऐं पंहिंजे चाहींदड़नि जो रखजो ख़्याल ऐं वध खां वधि रखजो उन जो ख़्याल जेको रखे थो अवां जो ख़्याल गाउन जे लाइ जॾहिं बि त खणो त मूं नाचीज़ गुलाम कदर गिराणू एंड जी एफ एम जी पूरी टीम खे पंहिंजी दुआउनि में ज़रूरु यादि रखजो हुन खां विछण महिल सोद इहे चयमि रब हुन खे पंहिंजे अमान में रखजांइ मुमताज़ लाशारी जे हिन सॉन्ग सां आऊं उन खे छॾे वेंदुसि साथ हलंदो रहे लाट ॿरंदी रहे जेॾां पेर तेॾां ख़ैरु अलाह।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे यादि रखंदा दायमी बुखार नज़लो ज़ुकाम बदन में सूर बेचे कमजोरी मलेरिया मुदे जो बुखार टीबी बदहज़मी मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे
4: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी मोबाइल नंबर 0370-3495-244
0: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खु़शख़बरी मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी राइडर खे 5 वॻे शाम ताईं नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त

चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करनी आ। रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत आए सचाई, लबन ते मुर्का विखरल दिल में आ बे आई। चाहत जा चंग वजायो, दिल जी गाल करनी आ, चंड ते महफिल सजायो, दिल जी गाल करनी आ। कराची का कश्मीर किंझर का कारूंझर ताई सुहिणी सिंधवासिन के आबिद चौहान जो सिक भरियो सलाम कुबुल पवे। प्रोग्राम दिल जी गाल सा गड आऊं आया आबिद चौहान आए अवां बुधी रहया हो GAFM नेटवर्क। GAFM नेटवर्क आए प्रोग्राम दिल जी गाल जे बुधंदड़न सबनी मानायतन महबूबन दिलरुबा दोस्तन प्री प्यारन के वेलकम भलीकार खुशामदी।

ऐं प्रोग्राम में शामिल कंदासीं ख़ूबसूरत गीत GFM नेटवर्क ऐं प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी प्रिय प्यारनि दिलरुबा दिलबर दोस्तनि जे नाम तुफ़ैल संजराणी जी ख़ूबसूरत आवाज़ में प्यारो गीत हिकड़ो तुंहिंजो ई सिरा जेको पंध थो पियो कराए अचो त गॾिजी हीउ गीत एंजॉय कयूं।

प्रोग्राम दिल जी गाल सां गड आऊं आया आबिद चौहान अवां बुधी रहया हो GAFM नेटवर्क। उम्मीद तो सभी महबूब अल्लाह जी अमान में पंहिंजे बचड़न सां शादाबाद खुश हूंदो।

पंहिंजनि सां प्यार वंडींदा हूंदो ऐं असांखे बि यादि कंदा हूंदो। कल्ह हिकड़ी नंढड़ी ब्रेक खां पोइ हाज़िर थिया आहियूं अव्हां जी ख़िदमत में। कल्ह जे न अचण जो सबब यकीन अव्हां फोन कॉल्स वसीले मूंखां ॼाणण जी लाज़मी कोशिश कंदो। त पोइ अव्हां खे हिकु भेरो जिन दोस्तनि अॼु असांखे न्यूली ट्यून कयो आहे उन्हनि खे पंहिंजो लाइव कॉलिंग नंबर ॿुधाईंदो हलां। असांजो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000111348।

0: दोस्तों के वंस अगेन वरी भी मां प्रोग्राम जो पैटर्न बुधाई दोला प्रोग्राम दिल जी गाल अवासा दिल जी गानी थी दियुन आए शायरी वसीले डेफिनेटली शायरी उहा जुबान है जेका यानी कि पूरी अवा जी सजी तकरीर जो मकसद महवर जेको आ बिन सिटन में भी जेका त उहा बयान करे छदींदी है। सो शायरी वसीले प्यार भी हुंदो आहे मोहब्बत भी हुंदी आहे शायरी वसीले पंहिंजे दिल जी गाल आसानी सां पंहिंजे महबूब ताईं पहुचाए सघिजे थी ऐं असां अव्हां जे महबूबनि जूं ॻाल्हियूं पंहिंजी ज़ुबानी दोस्तनि जी शायरी शामिल करे उन्हनि जे वसीले बि पुॼाईंदा आहियूं ऐं जेको आहे त अव्हां जी शायरी ॿुधी अव्हां जी दिल जी ॻाल्हि पूरी मुनी सिंध ताईं पहुचाईंदा आहियूं। ऐं हींअर वक़्तु थियो आहे हिकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ऐं ब्रेक खां पोइ अव्हां जूं लाइव
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: यादि रखंदा, डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीज़नि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347

0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अलरासी हेल्थ केयर क्लिनिक डंदो रोड मातली ते खुली चुकी आहे, जिते ॿारनि औरतनि ऐं मर्दनि जे हर बीमारी जो इलाज क्वालिफाइड ऐं MBBS सीनियर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी कंदो आहे। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ लगारी साहब रोज़ानो शाम 4 वॻे खां राति 10 वॻे ऐं हर आचर ते सुबुह 10 वॻे खां राति 10 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदो आहे। यादि रखंदा, दायमी बुखार, नज़लो ज़ुकाम, बदन में सूर, चेनी, कमजोरी, मलेरिया, मुदे जो बुखार, टीबी, बदहज़मी, मल्लो ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो इलाज कंदो आहे।
1: एड्रेस दंदो रोड अल मदीना होटल जे पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राज़ी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली लिगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-244।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज़ गोरियूं

0: जो छितूं पकियूं हुजन त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125252786।
0: जी हा, 3135525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

न साहिल को बि वांदो आ न बेड़ी का बि खाली आ न तारो को बि ज़ाहिर आ न काई गल ते लाली आ किथे हिन दर्द खे रखजे। वेलकम बैक भलीकार प्रोग्राम दिल जी गाल सां गॾु आऊं आहियां आबिद चौहान ऐं अव ॿुधी रहिया आहियो जी एफ एम नेटवर्क। दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त हींअर वक़्तु थियो आहे अव्हां जूं लाइव कॉलिंग अटेंड करण जो ऐं लाइव कॉलिंग अव्हां जूं शामिल कंदासीं प्रोग्राम में हिन लाइव नंबर ते 03000113488। कंहिं शायर हू बि चयो त पोइ इंतज़ार जो मज़ो पंहिंजो आहे ऐं कंहिं चयो त ॿी सज़ा काॾे ही सज़ा ख़तमु कर हाणे त पोइ इंतज़ार जॾहिं ड्रिगो थी वञे त पोइ सज़ा बराबरि थी वेंदो आहे पर हिन सज़ा जो बि मज़ो बि पंहिंजो आहे। यकीन मञो इहो यक तरफ़ो मज़ो न आहे। इन लज़त मां आऊं बि गुज़री रहियो आहियां। अवां महबूबनि खां विछोड़ो ॾुखियो हूंदो आहे पर कुझु हालात कुझु मजबूरियूं कुझु वक़्तु खो मसलो मसाइल दरपेश अची वञे त थोरी ब्रेक उहा थी वेंदी आहे। सो अॼु खोड़ सारियूं कबियूं दिलि जूं ॻाल्हियूं मोहबतूं कचहरियूं अञा त सर्द सियारे जी मौसम आई नाहे उन में त वरी रूह खे राहतूं रात जूं कचहरियूं अञा दिलि विंदराईंदियूं आहिनि। बिल्कुलु पंहिंजनि

मनकारनि खां फ्री थी करे सॼे ॾींहं जूं थकावटूं खणी अची ज़हन खे जॾहिं असां रिलैक्स कंदा आहियूं त चांहि जे कप जे सिप ते या कॉफ़ीअ ते असां को किताब हथ में खणूं या को रेडियो ऑन कयूं ऐं प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि ॿुधूं ऐं प्रेम प्यारनि सां दिलि जूं ॻाल्हियूं कयूं। अचो त प्रोग्राम में पहिरीं कॉल शामिल कयूं, असां सां केरु प्रेम प्यारो लाइन ते मौजूद आहे, शामिल कंदासीं प्रोग्राम में कॉलर खे। अस्सलाम वालेकुम, केरु साईं किथां खां? हैलो,

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई और औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: यादि रखंदा डॉक्टर अतीका सईद हर जुमे जे ॾींहुं मरीजनि जो मुफ़्त इलाज कंदी।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: एड्रेस कंटो रोड अल मदीना होटल के पोयां डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अल राजी हेल्थ केयर क्लिनिक मातली। वधीक राब्ते लाइ सजाद अली निगारी, मोबाइल नंबर 0370-3495-243।